मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर एवं एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की दूसरी तिथि तदनुसार 23 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 और 38 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल

0: इकोनॉमी भी।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज़्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

वह सर्वोच्च और असीम ऊर्जा जो हमें ईश्वर से मिलती है, ईश्वरीय शक्ति जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन, पालन और निर्माण करती है। यह शक्ति आध्यात्मिक आत्मा को शांति, पवित्रता और ज्ञान प्रदान करती है, साथ ही हमें असंभव कार्यों को भी सहजता से करने की शक्ति देती है।

कण कण में है वास तुम्हारा, तुम ही हो यह जगत सहारा। सागर की लहरों में तुम हो, नभ के तारों में तुम ही हो। तुम बिन सूनी है ये दुनिया, तुम ही हो जीवन की बगिया। मन में जब भी अंधकार हो, प्रभु तुम्हारा ही आधार हो।

हे ईश्वर, नादान हैं हम, अज्ञानी हैं, तेरी माया बड़ी सुहानी है। चरणों में हमको स्थान दो, हे प्रभु, हमें सच्चा ज्ञान दो।

हे प्रभु, तुम ही दाता, तुम ही विधाता, हर विपदा से हमें बचाता। तेरी भक्ति में ही शक्ति है, मेरी तुझसे ही अनुरक्ति है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान।

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है, सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहन और भाइयों, राम राम। भाइयों, आज कृषि की बातों में चर्चा करेंगे अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार करना, इसके बारे में। और भाइयों देखो, जो भाई गोभी की खेती कर रहे हैं वो एक ऐसा समय इबले में है जिसमें उन्होंने अगेता भाव उसका मिल गया है, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर फसलें हैं विशेषकर सब्जी की, उनसे मुनाफा जब वह बना है जब हम समय से आगे या पीछे उसकी बिजाई करें। इसी प्रकार जो अगेती फूल गोभी की नर्सरी है उसको तैयार करने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी बात है वो है भाइयों अच्छा बीज का होना। इसमें एक पूसा कातकी नाम की बहुत अच्छी बढ़िया किस्म है, अगेती किस्म है। इसके पौधे मध्यम आकार के हों हैं और पत्ते नीले हरे रंग के हों हैं, और जो इसका फूल हो है वो छोटे और मध्यम आकार का हो है। इसके फूल लगभग 60 दिन में तैयार हो गया है, और इसकी जहाँ तक हम पैदावार की बात करें वो 50 से 60 क्विंटल एक ही लगे से अब तक में मिल जाए, यानी कि बहुत अच्छी बढ़िया हमने पैदावार मिल सके। भाई जहाँ तक हम बात करें बिजाई के समय की, क्योंकि इसमें बिजाई के समय का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि बिजाई हम उस समय के अंदर कर लेंगे तो फिर हमने अगेती जो हमारी फसल है वो मिल पाएगी, और उसी समय हम अगेत के हिसाब से उसकी जो रोपाई है वो कर पाएंगे। अगेती फूल गोभी की जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसके लिए मई और जो जून का महीना है उसमें हमने नर्सरी को डाल देना है, और जैसे ही ये मान लो एक सवा महीने में तैयार हो जाए तो आगे जाकर जून जुलाई में इसकी जो रोपाई है उसका काम हो जाएगा। बाकी इसमें जहाँ तक हम बात करें बीज की मात्रा की, अगेती किस्म के लिए 300 से लेके और 500 ग्राम बीज एक ही लगे

0: अब तक काफी रहे है। और इसमें जो पौधे हम तैयार कर रहे हैं, जो पौधे तैयार कर रहे हैं उसके लिए जमीन की जहां तक बात करें हम 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारी होनी चाहिए, उसमें 3 बाई 1 मीटर ये हमने जो उसकी लंबाई और चौड़ाई है वो रखनी है। 1 एकड़ जहां तक हम पौध की बात करें उसमें कम से कम इस तरह की 15 से 20 कैरियों की हमें जरूरत पड़ेगी। उसमें अच्छी पहले खुदाई कर लें, भुरभुरी मिट्टी कर लें, उसके बाद जो गोबर की गली सड़ी हुई खाद है वो डाल दें, 2 सेंटीमीटर मोटी एक तय ही उसके अंदर हम खाद की बना दें और उसको फिर ज़मीन के अंदर हम अच्छे तरीके से मिला दें। इसमें एक बात का ध्यान जरूर रखना भाइयों कि वे जो हम खाद ले रहे हैं वो कच्चा खाद नहीं होना चाहिए, उसमें अच्छा गड़ा सड़ा हुआ कुरड़ी का खाद होना चाहिए ताकि जो हमारी पौध है वो अच्छी स्वस्थ बन सके। और एक भाइयों इसमें सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि जहाँ पर हमारे पानी के अच्छे साधन हों, जहाँ पर पानी मीठा हो उस जगह पर हमने पौध की बिजाई करनी है और बीज को पहले हमने बीज का उपचार है वो जरूर कर लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें जितना भी हो सके हम जो अगेती किस्म है उसमें बीज की मात्रा 300 से 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से ये बीज है वो लेना है और इसमें जो क्यारी है वो अच्छे तरीके से बना के बढ़िया उसमें खाद डाल के और फिर उसकी हम तैयारी करें। और फिर उसके बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि वह जो ऊपर है जैसे धूप ज़्यादा है, उसके बाद जैसे ही हमने उसको बीज को डाल दिया अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद उसके अंदर जो नमी है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। उसमें हम जो पानी है वो फुहारा विधि से भी दे सकते हैं या फिर एक जो केटली ही आवे है उसके हिसाब से भी हम दे सकें ताकि जो बीज है एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर ना जावे। और जो अगेती किस्म है उनको ज़्यादातर दिक्कत किस चीज़ की आवे कि बस इस समय पर तेज़ धूप हो जाए, उसी समय पर जो हमने पौध तैयार करनी है उसके लिए हम सरकंडों का एक छप्पर सा बना दें या फिर एक ये जो हरी टाटा हुआ है कई बार देखा होगा भाई कुछ भाई अपने घर पर भी लगा ले हैं या जो नर्सरी वाले हैं वो लगा हुए हैं उसका भी हम प्रयोग कर सके हैं। उससे जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी हमारे बीज को या हमारी पौध को नहीं लगती और हमारी जो पौध है वो बची रह जाए है। इसमें अच्छे बढ़िया तरीके से जिस जगह पर बोनी है उसमें मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है और जो खाद है उसमें एक दो खुदाई करके अच्छे तरीके से उसमें मिला लेना है ताकि जो डले हैं वो ना रोएं और जो हमारा बीज है वो आसानी से उसके अंदर छिप सके और फिर उसके से जो पौध तैयार हुए वो आसानी से पटने में भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आवे। भाई इन कुछ बातों का हमने ध्यान रखना पड़ेगा, इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो जो हमारी गोभी की अगेती कास्ट हम ले रहे हैं उससे अच्छी बढ़िया।
1: ये थी कृषि की बातें, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है, आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्र प्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति।
3: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
2: संप्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रिय हितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विक नेतारः स्वीकृतवन्तः। सर्वकारस्य द्वादश वर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी प्रचारः, स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादि

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए

0: अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Highlighting the government's 12 years in office, Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building. Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.

रात 7:30 पर कार्यक्रम ग्रामीण संसार में आज आप तक पहुंचेगी गांव में आपसी भाईचारा विषय पर पूर्व प्रसारित बातचीत। वार्ताकार होंगे श्री बलवान सिंह और नरेश।

देर शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में आप सुनेंगे धान की रोपाई में सावधानियां विषय पर पूर्व प्रसारित बातचीत। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अमित कुमार। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम खेत खलियान में चर्चा का विषय रहेगा तिल की काश्त।

पत्रों पर आधारित हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम थारी पसंद प्रसारित होगा रात 9:30 पर। प्रातः 8:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत में आज आप सुनेंगे कलाकार DC सिंह को।

रात 8:25 पर आप आनंद लेंगे सुगम संगीत का। प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया आप तक पहुंचेगा शाम 5:45 पर। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी एपिसोड संख्या 1312।

पात्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनचाहे गीत का प्रसारण समय रहेगा रात 10:30 पर। कार्यक्रम एक फिल्म से प्रसारित होगा रात 9:15 पर। फिल्म संगीत आप तक पहुंचेगा रात 7:30 पर और प्रातः 9:00।

0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आनंद आप लेंगे दोपहर 1:10 पर। अब से कुछ ही देर में प्रातः 7:15 पर आप सुनेंगे हिंदी कविता पाठ। कवि होंगे मनोज भारती। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कवि मनोज भारती द्वारा सुनाया गया कविता पाठ।
1: आकाशवाणी रोहतक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत काव्य पाठ के लिए मैं डॉक्टर मनोज भारत आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले काव्य पाठ में मैं आत्म परिचय के रूप में कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। कभी कहीं करते नहीं, कभी कहीं करते नहीं, कोई तेरह तीन गले मिला जो प्यार से हमने किया यकीन। गले मिला जो प्यार से हमने किया यकीन। और आजकल देख रहे होंगे गर्मी का प्रकोप बहुत अधिक है, तो उसी को लेकर के मैं अगली पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। रवि के तन में आग है, रवि के तन में आग है, मेरे मन में ताप, उससे सारा जग जला, मैं जलता हूं आप। और यही कविता की पंक्तियां स्वाभिमान के रूप में जब आती हैं तो देखिएगा कौन सी पंक्तियां कवि के मन से निकलती हैं। तेरी हाँ को हाँ कहूँ, तेरी हाँ को हाँ कहूँ, मुझे नहीं मंजूर, अब तुमको है सोचना, पास रहें या दूर। और स्वाभिमान का अगला पड़ाव, वो भी दौलतमंद था, वो भी दौलतमंद था, मैं भी बहुत अमीर, पैसा उसके पास था, मेरे पास जमीर, पैसा उसके पास था, मेरे पास जमीर। हिंदी मेरा गर्व है, हिंदी मेरा गर्व है, हिंदी मेरी शान।

हिंदी मेरा प्राण है, हिंदी है पहचान, और होंगे मेरे कर्म कुछ, होंगे मेरे कर्म कुछ भली बुरी कुछ प्रीत, जग में मेरे बाद भी होंगे मेरे गीत, जग में मेरे बाद भी होंगे मेरे गीत। अब गीत की जो बात हुई, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। कवि या साहित्यकार वह होता है जो समाज की पीड़ा वेदना विसंगतियों को अनुभव करके और उसको चित्रित व्यक्त करता है, बिंबित करता है अपनी कला और शिल्प के माध्यम से। तो प्रस्तुत है मेरा एक गीत तहत में, अधरों की मुस्कान देखकर, अधरों की मुस्कान देखकर, उजली सी पहचान देखकर, शबनम मुझको मान न लेना, मन मेरे अंगार भरे हैं पीड़ाओं के ज्वार भरे हैं, मन मेरे अंगार भरे हैं पीड़ाओं के ज्वार भरे हैं, पतझड़ झेले हैं छाती पर तब जाकर ये फूल खिले हैं, कितने भूले ख्वाब बसंती तब जाकर ये स्वप्न मिले हैं, बहुत दबाए मन में मैंने शूलों जैसे दर्द नुकीले, जाने कितनी ठोकर खाई गले लगाए मीत हठीले, विष पीकर भी उफ न बोले अश्कों के भी बंद न खोले, देवदार से अड़े खड़े पर निशदिन कितनी बार मरे हैं, शबनम मुझको मान न लेना, मन मेरे अंगार भरे हैं पीड़ाओं के ज्वार भरे हैं। और अगला पद देखिएगा, कुछ थोड़ा पागलपन रखते, कुछ थोड़ा पागलपन रखते, कुछ कुछ दिल भी है दीवाना, सत्ता की चौखट ललकारी झोपड़ियों में आना जाना, स्वर्ण पोटली सदा झूठ की माटी जैसे है ठुकराई, खड़े सत्य के साथ रहे थे बेशक कितनी पीड़ा पाई, मन के जिसके द्वार खुले थे हंसकर उनसे गले मिले थे, उनको पत्थर दिखते मुझ में जिनके मन से स्वार्थ झरे हैं, शबनम मुझको मान न लेना, मेरे मन अंगार भरे हैं पीड़ाओं के ज्वार भरे हैं। और अंतिम पद देखिएगा, और बिंबों को समझने का प्रयास करें, कविता की भाषा गीत की भाषा होती है संकेत की भाषा, तो इन संकेतों के अंदर के अर्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा। सिंदूरों का वक्त चुरा कर, सिंदूरों का वक्त चुरा कर, शब्दों से है रास रचाते, राहें तकती बूढ़ी आंखें तुमको हैं तब गीत सुनाते, जीकर देखे दर्द पराए तब जाकर कुछ छंद बनाए, इन गीतों को मुफ्त न मानो हमने कितने मोल चुकाए, करतल वंदन मान देख लो, वाह वाह के सम्मान देख लो, यही हमारी दौलत है बस, कब हमने घर बार भरे हैं, शबनम मुझको मान न लेना, मन मेरे अंगार भरे हैं पीड़ाओं के ज्वार भरे हैं, पीड़ाओं के ज्वार भरे हैं। और देखिएगा, अब गीत के बाद कुछ मुक्तक, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं भाता, जब से बड़ी हैं दूरियां सावन नहीं आता, बढ़ गए हैं साल कुछ गिनती में हुआ क्या, जब तक दुआ माँ की मेरा बचपन नहीं जाता, जब तक दुआ माँ की मेरा बचपन नहीं जाता। और देखिएगा एक कवि कैसे क्या लिखता है, दुनिया है आनी जानी लिख, एक साहित्यकारों के लिए संदेश है कैसा लिखना चाहिए, दुनिया है आनी जानी लिख, तू बिल्कुल असल कहानी लिख, मत देख चमक तू चांदी की, रूखी आंखों का पानी लिख, रूखी आंखों का पानी लिख। एक छोटी बहर की गजल देखेगा, इतनी सी दुनियादारी रख, इतनी सी दुनियादारी रख, केवल मतलब की यारी रख, इतनी सी दुनियादारी रख, रंग बदलना सीख न पाया, रंग बदलना सीख न पाया, तू मत इतनी खुददारी रख, इतनी सी दुनियादारी रख, पीर नयन से बह जाने दे, शेर को महसूस करें, पीर नयन से बह जाने दे, मत दिल को इतना भारी रख, इतनी सी दुनियादारी रख, और घात लगाकर बैठे अपने, घात लगाकर बैठे अपने, तू बचने की होशियारी रख। और नए बच्चों के मिजाज का एक शेर, एक तरफ तो तेरी हाँ हो, एक तरफ तो तेरी हाँ हो, दूजे में दुनिया सारी रख, इतनी

दुनियादारी रख और देखेगा जो करना है अब ही कर ले। संकेत देखेगा, जो करना है अब ही कर ले। घर चलने की तैयारी रख और उम्र कटेगी कैसे भारत, उम्र कटेगी कैसे भारत, दिल की कोई बीमारी रख, इतनी सी होशियारी रख। और देखिएगा, कहते हैं कि नए जमाने पुराने जमाने में बड़े परिवर्तन आए हैं, तो एक गज़ल पेशे खिदमत है, एक गज़ल रख रहा हूँ। हर एक शेर में आपको जो है नए और पुराने जमाने की तुलना मिलेगी। तो देखिएगा, जो था कहा करते वही, जो था कहा करते वही, शायद पुरानी बात है, जा भी गई बदले नहीं, शायद पुरानी बात है। इतने बरस के बाद भी, इतने बरस के बाद भी रावण बलि की कैद से थी पाक लौटी जान की, शायद पुरानी बात है, शायद पुरानी बात है। जो था कहा करते वही, शायद पुरानी बात है। ताले बिना पहरे बिना, ताले बिना पहरे बिना, चोरी नहीं डाका नहीं, अब तो कहीं होता नहीं, शायद पुरानी बात है। माँ बाप या दादी बुआ, संयुक्त परिवारों को देखिएगा, पुराने समय में कितने होते थे। माँ बाप या दादी बुआ रखते नहीं घर में, यहाँ थे घर बुलाते अजनबी, शायद पुरानी बात है, शायद पुरानी बात है। लैला कहाँ मजनू नहीं, आजकल के बच्चों का प्यार भी क्या है, यूज एंड थ्रो। देखिएगा, शेर को महसूस करें। लैला कहाँ मजनू नहीं, होता नहीं रांझा कहीं, मिलता नहीं फरियाद भी, शायद पुरानी बात है। दो दिन हुई न बात तो, दो दिन हुई न बात तो, जाते बदल हैं लोग अब, काटी खतों से जिंदगी, शायद पुरानी बात है, शायद पुरानी बात है। तकसीम अब क्यों हो गई, तकसीम यानी बटना, तकसीम अब क्यों हो गए इतने यहाँ ईमान, अब झूले थे फंदों पर कभी, शायद पुरानी बात है। होकर जुदा यूं यार से, पहले क्या होता था, कोई जुदा होता तो बहुत दर्द और पीड़ा होती थी, लेकिन आजकल की प्रीत क्या है। होकर जुदा यूं प्यार से, नाचे बहुत भारत मियाँ, थे रात दिन रोए कभी, शायद पुरानी बात है, शायद पुरानी बात है। और आजकल चाय का बड़ा प्रचलन है, तो चाय के बारे में दो दो पंक्तियों में देखूंगा, देखिएगा, आप प्रस्तुत कर रहा हूं। तीन हमारे शौक हैं, मेरा परिचय भी, तीन शौक क्या क्या हैं, और उनमें से कुछ एक दो शौक तो आजकल के बच्चों के लगभग सभी के हैं। तीन हमारे शौक हैं, चाय शायरी आप, जी भर कर जीना इन्हें प्रीत कहो या पाप। और चाय का देखिए, सामने नरम गरम प्याला रखा होता, भले ही गर्मियां हो, फिर भी चाय की चुस्कियों में जो आनंद लेते हैं चाय पीने वाले, घुले मिले हैं चाय में नर्म गर्म एहसास, मन भावन सा चाय का उस पर मधुर मिठास, मन भावन सा चाय का उस पर मधुर मिठास, संग तुम्हारे चाय का। कई बार अकेले चाय पीनी पड़ जाती है, दूसरे के साथ चाय का आनंद लेना हो तो कैसे चाय के पीने वाले आनंद ले सकते हैं। संग तुम्हारे चाय का करते यूं एहसास, पीते हैं कप एक से रख कर दूजा पास, पीते हैं कप एक से रख कर दूजा पास, अधरों ने प्याला छुआ, अधरों ने प्याला छुआ, नजरों ने मुस्कान, मन ने मन के पढ़ लिए सारे ही उनवान, चुस्की चुस्की इश्क सी घूंट घूंट में प्यार, रूपक समझिएगा, चुस्की चुस्की इश्क सी घूंट घूंट में प्यार, और कौन है बा वफा यहाँ चाय सा यार, और कौन है बा वफा यहाँ चाय सा यार, तेरे हाथों जो मिले अदरक वाली चाय, तेरे हाथों जो मिले अदरक वाली चाय, खुलते हैं फिर प्रीत के नए नए अध्याय, फागुन जैसी ताजगी चाय में। देखिएगा, चाय मौसम के अनुसार नहीं होती, हर मौसम में पीने वाले पीते हैं। फागुन जैसी ताजगी, सावन सी बौछार, वही चाय की चुस्कियाँ कहाँ मिलेंगी यार।

0: और आप एक विषय पर चाय पर तो बहुत से दोहे सुनाए, अलग अलग विषयों को लेकर के दोहों में मैं अपनी बात समेटता हूँ। पत्थर होते शहर में, देखिएगा लोग कितना संवेदनहीन होते जा रहे हैं कि सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो, आदमी तड़प रहा हो, वीडियो रील बनाने में ध्यान रखते हैं। तो ऐसी मरती हुई संवेदनाओं के ऊपर दो पंक्तियों में पूरा बिंब समेटता हूं। पत्थर होते शहर में हांफ रहे अनुबंध, ढोते पार्थिव प्रीत के अनुबंध, टामी घर में आ गया, टामी घर में आ गया, गैया हुई यतीम, कैक्टस आंगन में खिला, रोए तुलसी नीम। क्या जानेंगे प्रीत को, क्या जानेंगे प्रीत को, मिल्ला पीर फकीर, क्या जानेंगे प्रीत को, मुल्ला पीर फकीर, या तो मीरा जानती या जाने फिर हीर। जा बैठे उस फूल पर, आज का युवा प्रेम को किस परिभाषा में गढ़ता है। जा बैठे उस फूल पर जो भी दिखा हसीन, तितली भंवरे कर रहे चाहत की तोहीन, तितली भंवरे कर रहे चाहत की तोहीन। और जीवन में जब भी मिले, जीवन में जब भी मिले रंजो गम तकलीफ, गहराए अशार सब सुलझे सभी रदीफ, मन में ले बेचैनियां, आंखों में भर याद, पास बिठाकर बेबसी खूब किया संवाद। और अब अंत में एक दोहे से और एक संदेश के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। खतों को और चिट्ठियों को बहुत से लोग जानते हैं, आंसू भीगी चिट्ठियाँ, आज की पीढ़ी नहीं जानेगी खतों को लिखने को, आंसू भीगी चिट्ठियाँ, सिसकी से अल्फाज, पाती पंछी ले उड़ा मोबाइल का बाज। और इस संदेश के साथ विविधा में आप भी चिट्ठियों का, खतों का, ईमेल का, संदेश का प्रयोग करें और आकाशवाणी को निरंतर लिखते रहें, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। विविधा कार्यक्रम में आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी को पुनः नमस्कार।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मनोज भारती द्वारा सुनाया गया कविता पाठ। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो साथी सोनिया शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं इस गीत के साथ।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सपनों की उड़ान लिए, उम्मीदों का मान लिए, दुनिया भर के खिलाड़ी आज एक मैदान पर आए। रंग रूप और भाषा की दीवारों को जो तोड़ दे, वही तो ओलंपिक है जो सारी दुनिया को जोड़ दे। हार में भी सीख है, जीत में भी उमंग है, खेलों का यह उत्सव खुशियों का एक रंग है। भागते कदम, बुलंद हौसले और पसीने की धार, यही तो है असली खिलाड़ी का सच्चा श्रृंगार। विश्व के मंच पर जब तिरंगा लहराता है, हर भारतीय का सीना गर्व से भर जाता है। जीत का यह जश्न केवल पदक का मोह नहीं, यह तो मानव की असीम शक्ति का प्रतीक है और कुछ नहीं। छोड़कर सारी सीमाएं, आओ आज हम यह ठाने, खेलों की इस भावना को सारा जग अपनाए। तेज, ऊंचा, मजबूत और साथ मिलकर आगे बढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर चलो एक नई मिसाल गढ़ें। जी हाँ श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, जो हर साल 23 जून यानी आज के ही दिन मनाया जाता है। यह दिन खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता का जश्न मनाने के लिए जाना जाता है। जो लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 23 जून यानी आज के ही दिन वर्ष 1894 को पेरिस, फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के गठन की याद में की गई थी। बैरोन पेरी डी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक का जनक माना जाता है। इस विशेष दिवस को मनाने का प्रस्ताव जनवरी वर्ष 1948 में सेंट मॉरिटस में आयोजित 42वें IOC सत्र में पारित किया गया था, जिसके बाद पहली बार 23 जून वर्ष 1948 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य खेलों के माध्यम से दुनिया भर में शांति, भाईचारा और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य लक्ष्य खेलों को समाज के लिए सुलभ बनाना और युवा पीढ़ी को खेलों से जोड़ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 की थीम की अगर बात करें तो इस वर्ष की जो थीम है वो है यू कैन डू दिस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इस वर्ष की लेटेस्ट मूव वैश्विक अभियान के तहत इस थीम को चुना गया। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनके मन के संदेह को दूर करके आत्मविश्वास जगाने और खेलों के माध्यम से सक्रिय जीवन की ओर पहला जो कदम है उसे उठाने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान हर साल आज के दिन 23

त्याग की मूरत कर्म का साथी, जन जन का यह सच्चा हितेशी। निस्वार्थ भाव से पथ जो सजाए वही लोक सेवक कहलाता जाए। ना कोई चाह ना कोई लालसा, जनता की सेवा ही जिसकी अभिलाषा। कानून के धागों से जो समाज को बुने, मुश्किल राहों में भी जो अपने कर्म चुने। चाहे हो आंधी या हो तूफान, राष्ट्र निर्माण में लगा दे अपनी जान। हर चेहरे पर मुस्कान जो बिखेरे, दूर करे वो सब अंधेरे। संयुक्त राष्ट्र का यह पावन दिन समर्पित है इन सेवकों के दिन। इनके जज्बे को हमारा शत शत प्रणाम, जिनके कर्म से रोशन है जहान। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस आज हम मना रहे हैं, जो कि प्रतिवर्ष आज के ही दिन 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। आज का यह दिन समुदाय के प्रति लोक सेवकों के योगदान समर्पण को सम्मानित करने तथा युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 20 दिसंबर वर्ष 2002 को प्रस्ताव ARES 57-277 के माध्यम से इसकी घोषणा की थी। पहला लोक सेवा दिवस 23 जून वर्ष 2003 को मनाया गया था। उद्देश्य विकास प्रक्रिया में लोक सेवकों के कार्यों की सराहना करना, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और सुशासन

के महत्व पर प्रकाश डालना। यह दिन वर्ष 1978 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा श्रम संबंधों लोक सेवा कन्वेंशन को अपनाने की वर्षगांठ का भी प्रतीक है, जो सिविल सेवकों के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है।

श्रोताओं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सच्ची लगन और कठिन परिश्रम से जो काम किया जाता है उसका परिणाम हमेशा ही शानदार और सुखद होता है। जीवन में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। जिस तरह बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, उसी तरह मेहनत का परिणाम भी धैर्य रखने पर सबसे अच्छा मिलता है। जब आप कड़ी मेहनत से कुछ पाते हैं तो उससे मिलने वाला संतोष और आत्मविश्वास सबसे अलग होता है।

0: 62.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 8:15 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
2: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
2: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक

0: संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने

0: शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6वें व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार।

0: ट्रक लेकर आ रहे चार जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट हैज बीन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ फास्ट ग्रोइंग क्रेडिबल एंड रिलायबल ग्लोबल पावर। President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embrace the spirit of nation building.
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: मिस्टर मोदी सेड नियरली 25 करोड़ पीपल हैड मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी इन रीसेंट इयर्स, लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ अ लार्ज न्यू मिडिल क्लास एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी।
2: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इसमें फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
3: This year, the government has announced a total of

0: लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कलाकार डीसी सिंह को।
1: तो सजनों, इतना अरसा बीत जाने के बाद राजकुमार फूल सिंह अपने बड़े भाई भूप सिंह के पास जाकर के अपनी भाउज की शिकायत करता है और कैसे क्या कहता है।
2: हे रे

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रोहतक केंद्र।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कलाकार डीसी सिंह को।
1: तो सजनों जब वो मालन उस नोटंकी के लिए हार लेके जान लगी तो फुलसिंह एक बात के द्वारा मालन को रोक कर क्या कहता है,

इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे डीसी सिंह। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 9 बज चुके

ते हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको सुनवा रहे हैं आरजू फिल्म से गीत। इस गीत को आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में हम है राही प्यार के फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं धड़कन फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू ने। समीर की शब्द रचना है, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

धड़कन फिल्म से अभी आपने गीत सुना। मिस्टर आशिक फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इंदीवर की शब्द रचना है, जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया है।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साधना सरगम और साथियों की आवाज में विजयपथ फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं। फेज अनवर ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

विजयपथ फिल्म से अभी आपने गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कोयला फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इंदीवर के बोल हैं और राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया है।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं सोनू निगम और अलका याग्निक ने, समीर के बोल हैं अनु मलिक ने, धुन तैयार की है।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजने को अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद 10:05 पर समाचार होंगे अंग्रेज़ी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव

0: इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुँच बढ़ाएगा। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। फीफा विश्व कप 2026 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:40 हुए हैं। अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि

पहली कड़ी में श्रोताओ, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में। याद है ना, हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओ, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओ, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओ, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओ, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज
किस पुरातत्वविद ने की।

0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओ, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू? है
2: क्या करूँ

0: अक्वा इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बस्सी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट

0: उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
1: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
0: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
1: साल पर साल गुजरते गए, बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी, अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी। वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं।

0: वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रहे थे। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
2: है।
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा?
4: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
2: खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
1: चलो चलो
3: जल्दी चलो, हम सबको बताते
0: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और 1:05 पर होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
4: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स .in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74,00,000 किसानों की सेवा कर रहा है।
3: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
5: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
6: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
5: They all constitute an important threats for us.
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होबिजर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
8: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियों, विस्तृत राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
8: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है। इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। आज राष्ट्रपति जिन 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे, इनमें टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्ति करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की सहायता योजना के तहत राज्य के जिलों में नए व पुराने ट्रकों और बसों को बदलने

0: पर मोटर वाहन कर में छूट को मंजूरी दे दी है। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए BS6 इलेक्ट्रॉनिक और CNG ट्रकों और बसों की खरीद पर मोटर वाहन कर में 100% छूट दी जाएगी।
1: नए BS6 या उससे कड़े मानकों वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल CNG ट्रकों व बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100% मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी, ये निर्णय किया गया है। इसके अलावा इन्हीं मानकों वाले पुराने इस्तेमाल किए हुए EV CNG ट्रकों व बसों की खरीद पर भी पात्र लाभार्थियों को मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट दी जाएगी। दोनों ही मामलों में मोटर वाहन कर में छूट 10 साल की के लिए मान्य होगी।
0: मंत्रिमंडल ने आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति 2026 और अध्यापक स्थानांतरण नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। ये संशोधित नीतियां पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की टिप्पणियां और विभिन्न हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया पर उचित विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। मंत्रिमंडल ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की टीम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सरकारी निधि के गबन के आरोप में गिरफ्तार किए गए IAS पंकज अग्रवाल को आज अदालत में पेश किया जाएगा। उन पर हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के खातों से धन की हेराफेरी का आरोप है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे यशुदास और आशा भोसले की आवाज़ों में अगर फिल्म का गीत। इस गीत के बोल लिखे गुलशन बावरा ने और संगीत था सोनिक ओमी का। कार्यक्रम में अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत, फिल्म का नाम है आपके दीवाने। गीत का संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने।

मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपके दीवाने फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत था राजेश रोशन का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं चेहरे पे चेहरा फिल्म का। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित ने। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीत है एन दत्ता का।

0: मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में अभी आपने सुना चेहरे पे चेहरा फिल्म का गीत, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे एन दत्ता।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। लता मंगेशकर का गाया दाग फिल्म का गीत आइए आपको अब सुनवाते हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर का गाया भी आप सुन रहे थे दाग फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे साहिल लुधियानवी ने और संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लता मंगेशकर का ही गाया। आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्लैकमेल फिल्म का गीत। राजेंद्र कृष्ण ने बोल लिखे हैं और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ब्लैकमेल फिल्म का गीत। गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएं, उससे पहले आइए सुनें ये संदेश।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बंधन फिल्म का गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।
2: ना है तो जाओ।

अभी आपने सुना बंधन फिल्म का गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार अनजान और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। अब आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अर्चना फिल्म का गीत। गीतकार हैं नीरज और संगीत है शंकर जयकिशन का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे अर्चना फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे नीरज ने और संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने। मन्ना डे की आवाज़ में आइए अब आपको सुनवाते हैं योगेश का रचा गीत। संगीतकार हैं सलील चौधरी और फिल्म का नाम है आनंद।

0: कभी तो हंसाए।
1: मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना आनंद फिल्म का गीत। गीत को रचा था योगेश ने और संगीत तैयार किया था सलील चौधरी ने। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फकीरा फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। इसके गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये आपने सुना फकीरा फिल्म का गीत, गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। कार्यक्रम के अंत में आइए अब आपको सुनवाते हैं आसपास फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage. And in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय

0: जनता पार्टी का साथ, और मूड जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशक

0: लय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में

0: भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: खेत कल्याण कार्यक्रम सुनने वाले भाई सारे वन भैया ने अनिल भाई की राम राम। और भाई मौसम की बात करा तो मौसम चौपाल था, बाहर की बात करा तो खूब अच्छी भाई तेज हवा बादलबाजी भी हो रही है और अच्छी आंधी के आसार से हो रहे हैं। और कई दिन तक भाई हम देखने लग रहे हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, वो उस करिए रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि भाई कई जगह अच्छी बारिश हुई है, तूफानी बारिश हुई है, कई जगह भाई सूखे रह गए। वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस का जो प्रभाव था पश्चिमी विक्षोभ का, कई जगह सक्रिय रहा और कितने भी थोड़ा सा इसका असर कम देखने में मिला है। ये पीछे इस हार साइड का जो एरिया था, बड़ी अच्छी बारिश थी, भिवानी में भी आसपास के जो कुछ गाँव में बढ़िया थी, कुछ भाई अपना बाट देखे थे वंचित रह गए। तो मौसम का एक तालमेल सा ऐसा हो रहा है। और विशेषकर हम बात करें कि हमारे जो अर्ध सिंचित एरिए हैं या फिर वीरानी एरिया में कह सके हैं, उन एरिया में भाई जिन भाइयों ने भाई बाजरे की बिजाई कुछ एक अन कर दी, कुछ एक अपने बाट में भी है, कुछ एक भाई मौसम की मारी भी रह गई। भाई मौसम विभाग की चेतावनी थी और कई भाई यहाँ से भी थे, बोला भाई मौसम की वजह से हमने तो बोया को नहीं और बारिश नहीं हुई। लेकिन बस दोनों तरह की बात है। आजकल इस मौसम में ईसाई रहे है कि भाई सवेरे बिल्कुल अच्छी दिन में आज दम देखा, खूब बफर गर्मी थी, खूब तेज़ धूप थी और मौसम भी बदलाव में है। तो ये पश्चिम विक्षोभ का भी असर है और अपना भाई जो प्री मानसून भी हम कह सकें हैं, मौसम ईसाई चल रहा है। तो जो भी हम खेत कर के काम करें, क्योंकि भाई मोटे बात ये होगी कि पहले अपने भाई 1.25 किलो जो बाजरा होया करता घर का निपचे उड़ा, वो हम बो दिया करते देसी बाजरा। आजकल हाइब्रिड भी हैं और भाई ज़रूरत भी है, क्योंकि पैदावार भी हमने हर एक चीज़ है हमारी भाई नकदी फसल होगी। पहले बस ये रहा करता भाई 12 बिन्ने का फूसर, 12 बिन्ने का नाज और जो खान में बाजरा है आमतौर पर विचाल्या करता, लेकिन आज सारी फसलें हमारी नकदी होगी। हालांकि ये बात अलग है कि बाजरा हम खान के रूप में कम प्रयोग में करें, लेकिन भाई पक्षियाँ खातर, मुर्गे जो घर हैं उन खातर बहुत सारे बाजरे के ऐसे प्रोडक्ट्स बनने लगे, बिस्किट तो, टोस्ट तो, और बहुत सारे बाजरे के भाई लड्डू हैं, कई तरह की सी जो चीज़ें हैं महंगी महंगी बिकने लगी। बाजरे की मांग बढ़ रही है और बाजरे में भाई ये भी हो गया कि पहले जो पुड़ी फरड़ का लोभ था वो ही घाट हो गया, क्योंकि पहले तो भाई पुड़ी की परोटी बांध के लेंदे, बाजरे की परोटा बांध के लेंदे, तो उसमें जो पत्ता खिंड जाता या तो भाई अपने छोर के आसपास में लगा देंदे, नहीं तो उसने भाई मोड़ मार के नर भाई बाजरे की पुड़ियाँ के मैं गठड़ में अपना जचा के और फिर ले आ करते। कुछ देसी किस्में भी होया करती, खाण में बड़ा स्वाद होया करता और थोड़े हाइब्रिड हो गए, खाण में वो स्वाद नहीं रहे, ना भी चिड़िया खाँदी ना कोई तोते हैं।

0: सावरा का जो पक्षियों का नुकसान है वो नहीं रहा, तो थोड़ा सा स्वाद में इसमें फर्क पड़ गया। लेकिन चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की हम बात करा तो उनके जो वैज्ञानिक हैं भाई इसी इसी किस्में काटी हैं जिनमें प्रोटीन भी है और बहुत अच्छी स्वादिष्ट किस्में हैं, जिसका कि मामसी 306 है, तो उन किस्मों का भी भाई अपना जो है भाई ध्यान में रख के और बिजाई कर सके हैं। लेकिन थोड़ा सा भाई महंगे हैं, फास्फोरस वाले बाजरे में थोड़ा सा भाई यानी ध्यान ये रखना है कि वजह से बढ़िया खेत है हमारे, जल निकास की सुविधा नहीं है, उड़ भाई ना लगाऊं बिरानी एरिया में जरा जल निकास की सुविधा है, अर्धसिंचित एरिया है, नरम हमारे खेत हैं, उड़ भाई इसने लगावें। और फास्फोरस वाली जो खाद है SSP सिंगल सुपर फास्फेट जिसने हम कहते हैं वो हम ज़रूर डालें, हालांकि भाई देखो DAP के रूप में भाई फास्फोरस की पूर्ति करें हैं, लेकिन सबसे बढ़िया रहे है SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो हमने आराम तो मिल भी जाए है, थोड़ा सा जो बाजार भाव है इसका वो भी उन तक कम है, 1 कट्टा 1.5 कट्टा तक भी हम घेर सके हैं। और जो अपने पशुओं के जो डॉक्टर हैं पशु वैज्ञानिक हैं वो भी ये सिफारिश करें हैं कि भाई आप जो चारा वाली फसलें हैं उनमें तो सिंगल सुपर फास्फेट ज़रूर डालो, ताकि इसमें गंधक भी है कैल्शियम भी है और फास्फोरस तो इसमें है, जिस तरह पशुओं में आगे चल के खून मूत्रना जो रोग है कई तरह की जो बीमारी है वो भी बचाव रह जाए है। और आजकल हम सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें जिंक कोटेड है, जिंक की पूर्ति वा कर दे है, जिस तरह भी अपना यूरिया है नीम कोटेड है, तो इसी तरह जो अच्छी जो खादें हैं उनका हम चुनाव करें और बढ़िया अच्छी डाल बाई जुताई करके और भाई एक छिड़क बा का इसमें लोभ ना करें, ये भाई यानी इसमें ध्यान में रखना है। और बाकी तो भाई देखो मौसम ऐसा चल रहा है भाई, जो कपास की बिजाई कर रखी है अच्छी नुड़ाई गुड़ाई करें, जो भी खरपतवार हैं उस समय तो निकालते रहें, जो भाई अपने बेल वाली सब्जी भाई लगा रखी हैं तो वो अपने भाई समय पर अच्छी टिंडा है खीरा है तोरी है घिया है समय पर तुड़ाई करके कोशिश करें भाई शाम के समय पर हम तुड़ाई करके उसने रख लें, नीचे अच्छी कोई बोरी बारी धर के उन पर खुली रख के आली बोरी उन पर ढक के और फिर उन पर पानी का छिड़काव दे के सवेरे फिर अपने मंडी में लेके जावें। अगर छटाई उसकी हमने नहीं करी तो फिर भी हमने बाजार भाव उसका घाट मिला, कोई बेडंगी है बांगी को गिया है टिंडा है कोई पाके उड़ा है, इस तरह के जो टिंडे हैं वो अपना चटाई करके सब्जियां की और फिर बाजार में भाई अच्छी तरह से लेके जाऊँ, ठेस ठेस उनका कोई सी नहीं लग गए और ताकि भाई जो बाज़ार भाव हो हमने अच्छा मिले। बाकी भाई तो कोई हमारी और भी कई फसलें हैं जो हमने लगानी है, ग्वार की हम बात करें और विशेषकर तिलनी फसल में तिल का हम जिक्र करें तो आज तिल का इसमें जिक्र करेंगे भाई कौन सी किस्में लेनी है किस तरह से हमने भाई इसकी बिजाई करनी है। लेकिन उससे पहले भाई ने पक्का साज की रागनी सुनवा दें, गायक कलाकार हैं गुलाब सिंह खांडवाड़ा।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

तो भैया आपने सुनी रागनी गायक कलाकार थे गुलाब सिंह खांडवाल, इनकी गायी हुई रागनी एक और भी भजन सुनवाओगे, लेकिन उससे पहले हम जिक्र भाई मौसम का कराया। और देखो भाई कुछ मौसम अपने चौपाल से बाहर की बात करी, आंधी तूफान से का मौसम है, बाकी जिन साइड का जो एरिया है बैनी साइड का जो एरिया है उड़ भी अच्छी धूप भी खिल रही है, तो अपना सारा मौसम के नज़ारे हैं। मतलब कही थी ना भाई अपना जगन्नाथ जी की रचना है, मतलब चांद सूरज और तारे सारे करते हैं प्रकाश, पृथ्वी जलवायु आकाश सभी का तेरे अंदर वास, तो प्रभु की लीला है, अपना जो प्रकृति के साथ संतुलन हमारा है उसे नज़ारे भाई जो अच्छे ऊँची बूंदे हमने देखने में मिल रहे हैं। और बाकी तो भाई देखो काल और सम्मत ये एक बाण भाई है पैरा है, और इब तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हो गए कि हम खेती बाड़ी में भाई कोई अनाज की क्या का तोड़ा आ रहा है, चारे का तोड़ा नहीं रहा, तो पहले तो खूब इसे देखें भाई सूट काटे हैं बिल्कुल जो कच्चे झाड़ टहरा की जूतियाँ मैं अपना हाथम पैर पैर के उसके गहरे लाया करते और अपने गिनली बना के उसकी खेई सी छोटी लेके आया कर दे, पत्ते पाते पीपड़ा केरिन के खूब बुजुर्ग बताऊँ चराए हैं, पाखड़ी भी भाई अपने पाड़ पाड़ के, तो एक समय समय की बात है। और बाकी भाई छोटे नफे तो इसमें खेती बाड़ी में बनुए चलना, थोड़ा सा आप ध्यान रख के खेती बाड़ी का फिर इसमें काम करें। भाई कई भी है किसी कवि ने बोला भाई मांगे राम जी की रचना, मांगे राम बोला कड़े तक रहूँ इस टोटे का ओढ़ नहीं, ईरे पन्ने मोर सरफी बोला किस मानस ने लोड़ नहीं, मी बरसे जब घर टपके फिर चीज धरण ने ठोड़ नहीं, कातक लगते सोच खड़ी हो बोला ओढ़न खातर भाई छोड़ नहीं, सीसी सीसी करे बेचारा जाडे के मठरे गया, अरे भाई के जीने में जिया साजन धक्के खाता फिरे गया, लाख मर बरस तक जीव मानस टोटे के माँ मरे गया। तो जमींदारा अपना भाई पहले की हम बात करा, पहले भी हमने जिक्र करे अभी 12 महीने फूसनाज, लेकिन आज जितने भी जो भौतिक साधन हैं जी वो भाई हम मोटरसाइकिल स्कूटर की बात करा खेत मान जान खातर या वैसे भी करना भाई अपना वॉशिंग मशीन तो लेके भाई अपने टीवी जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है गैस का है सारे खर्चे काम मारा रह गया फिर वही जमींदारा। तो इसमें जो बुजुर्ग कहा करने मतलब अभी कातक में सियाणा हो उससे पहले सियाणा हो के अच्छी जो किस्में हैं उन्नत किस्में हमारे एरिए के हिसाब से उनका हम चुनाव करें, सहायक धंधे की ओर बढ़ें, और जितने भी जो हमारे सब्जी का जिस तरह हम बात करें सब्जी फसलों की खूब भजन बेल वाली सब्जियां तो अच्छी पैदावार ली है अगेती दशा में पछेती दशा में, या फिर कुछ अपना भाई आधुनिक खेती है उसके साथ हम जुड़ें फिर जो हमारा भाई काम दाम है तब मजा में इसमें चल लगा। बाकी भाई तेल तेल वाली फसलों में तिल का हमने जिक्र कराया बहुत, तो देखो पैदावार तो इसमें काट लिकड़े है लेकिन इसका जो बाजार भाव है वो बहुत अच्छा मिला है, हर सर्दियों में जाके तो ये मान के चलो खूब जो तिल की कीमत है वो बढ़िया हमने मिला है। और भाई आमतौर पर चार एक बोरी चार एक क्विंटल तीन क्विंटल चार क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से जो तिल की पैदावार वो हमने मिल जाए। इसके लिए जो उन्नत किस्में हैं भाई पुरानी किस्म है हरियाणा तिल नंबर एक, या किस्म में पत्ती जो मरोड़ रोग है फैलोडी जिसी जो बीमारी है उनके लिए प्रतिरोधी है, औसतन पैदावार भाई 3 क्विंटल के आसपास इसका है। लेकिन हाँ अच्छी अगर देखभाल हम कर ले हैं तिला में आमतौर पर हमने देखा कि भाई जो खरपतवार भाई छिड़कबा के बोते हैं फिर उसमें कई तरह की जो बेल है और बेल का प्रकोप तिल पैसा हो जाए कि इसी गिनली मिनली मार ले सांप की डाल भाई, ना उसमें फूलन बापरन दे ना काट दे यानी भी हमने समस्या होगी, तो खरपतवार नियंत्रण का इसमें ध्यान रखना है और वो ठीक जब रहेगा हम थोड़ा सा लाइना में बिजाई करें ताकि समय पर भाई इसकी नुड़ाई गुड़ाई वो हम कर सकें। तो इसमें तेल कंस की जो मात्रा है किस्म का नाम है एक बार फिर भाई अंदोरा दे हैं हरियाणा तिल नंबर एक जिसने हम HT1 के नाम से भी जाना है 49% तिल की मात्रा है और मोटा मोटी भाई 85 दिन ये मान के चलो 3-1 महीने की ये फसल है। इसके बाद में आगे चल के भैया ना भाई दूसरी जो फसलें लेनी है भाई सरसों लेनी है आगे चल के जो दूसरी फसलें हैं चना लेना है वो भी इसमें आराम से ले सके हैं। अगले किस्म है भाई हरियाणा तिल नंबर 2 जिसने HT2 के नाम से भी जाना है, यह किस्म पूरे हरियाणा में पंजाब में दिल्ली जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और कई भाई राज्यों के लिए सिफारिश करी जाए, बहुत अच्छी किस्म है वो 3 महीने में भाई पक्के तैयार।

आजकल अच्छे कृषि यंत्र हैं, अगर कोई पुराने खरपतवार हमने देखे हैं दो बार रुकाट के एक दो बार फिर अपना रोटावेटर मार दें, मैज मार दें और फिर इसकी जो बिजाई हम कर सके हैं। खेत की तैयारी के बाद में 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें भी बफर रहेगा और 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर हमने बोना है। फासला जो हमने रखना है 30x15 यानी कि भाई खुड़ से खुड़ का हमें 1 फुट का और 15 सेंटीमीटर का आधा फुट का जो अपने पौधे से पौधा फासला इसमें रखना है। खादा किस्म बात आओ है तो भी आमतौर पर तिल की जो हमारी फसल है घनी खाद हम देते हैं तो इसमें वानस्पतिक जो बटवार है वह घनी हो जाए, पैदावार इसमें कम मिले है। गोबर की गड़ी सड़ी खाद अगर हमारे पास तैयार है तो वो हम 10 एक टन गेर सकें, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट वाली जो केंचुआ खाद है उसमें थोड़े में भी काम हमारा चल जाएगा वो हम डाल दें। और वही 33 किलोग्राम जो यूरिया खाद है वो आखिरी जुताई पर हम डाल दें, आगे चल के हमने किसी भी डाल की कोई यूरिया है दूसरी खाद इसमें नहीं देनी। तो भाई इसमें बाकी जो बात रहेगी कि भाई बिजाई के बाद में थोड़ा सा सावधानी हमने मोटी इसमें ये रखनी है, जितना भी जड़ती हो उसके खरपतवार नियंत्रण रखना है। कई तरह की जो इसमें बीमारी भी भाई तिल में आ जाए हमारे में उसके लिए पहले हम जो दवाई है थायरम दवाई है 2 ग्राम दवाई 1 किलो बीज यानी कि 2 किलो बीज हमने लेना है 4 ग्राम थायरम दवाई इसमें मिला लें, उससे भी बचाव इसमें रहेगा और जितने भी हमारी फसल खरपतवार नियंत्रण अच्छा रहेगा, खरपतवार रहित रहेगी, अड़ंग बड़ंग ना जामेगा, उतने जो रस चूसने वाले कीट हैं जो मरोड़िया रोग है वो इसमें नहीं आएगा। आगे चल के फिर भाई मौसम के हिसाब से आगे की देखभाल हमने करनी है तो इसमें समय रहेगा जिक्र और भी करेंगे। एक रागनी और भजन एक बार सुनवा दे हैं, गायक कलाकार एक बार फिर गुलाब सिंह खांडवाड़।

तो भैया आपने सुनी रागनी गायक कलाकार थे गुलाब सिंह खंडवाल, और जिक्र मारा चल रहा था भाई जो तिल की काश दिन बयान करनी है वो के सावधानी इसमें रखना है बीज का, जिसमें जिक्र करें अभी 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। खुड़ से खुड़ का फासला 30 सेंटीमीटर का, पौधे से पौधे का भाई आधे फुट का 15 सेंटीमीटर का, खेत की बढ़िया जुताई तैयारी हम कर लें, और किस्म का हमने जिक्र कराया था वो किस्म हमने लेनी है, और बिजाई किस्म की जरूरत बात है तो भी देखो गणा के तब बोया भी कई बार सही नहीं है होता, तो अपना ये करें कि जुलाई से लेके अगस्त तक का जो पहला सप्ताह है या फिर सिंचित जड़ बरसात पर निर्भर जो हमारे खेत हैं जड़ भी थोड़ा सा पानी के पुख्ता साधन है वो अपना भाई अपना इस महीने का है आखिर तक भी है भाई इसमें बोस के हैं बीज भाई इसमें साफ सुथरा हो खूब किसी डाल की बिल तिला में हमने देखा आमतौर पर बेल बहुत पाइजा है, तो किसी भी अपने किसान भाई पे तो भाई निपजे उड़ा जो बीज गामत अगर ले हैं तो उसकी बढ़िया डाल सफाई करके बेल बैल चुग के जार के पिछोड़ के और फिर हमने जो तिल का बीज है वो बिजाई के लिए प्रयोग में लेना है, और उसमें भाई जो थाईराम दुहाई का हमने जिक्र करा अभी 2 ग्राम दुहाई और 1 किलो बीज के हिसाब से बीज उपचारित करके फिर हमने बोना है, और इस दुआई में भाई कोई मोटा खर्चा भी नहीं आता है और ना ही कोई गणा भाई इसमें कोई जहर है कोई बांस है, बस 1 ग्राम दुआई 2 ग्राम दुआई 1 किलो बीज में हमने छिड़काव करके फिर इसकी बिजाई करनी है। इन बातों ध्यान और ध्यान भाई घड़ी का भी इससे एक साथ भाई खेत कल्याण कार्यक्रम समाप्त होया, चाल लेंगे सारे बण भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेत खलिहान कार्यक्रम। मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 3 बज चुके हैं। अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। FM बैंड 103.5 मेगा

हर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 और 14 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। आइए सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

नमस्कार, युवा संसार सुन रहे सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम लेकर मैं हूं आज आपकी अपनी रेडियो दोस्त नंदिनी। तो साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक सेवा दिवस के बारे में। जी हां साथियों, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे प्रत्येक वर्ष 23 जून यानी आज के दिन मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी, जिसका उद्देश्य समाज और राष्ट्र के विकास में लोक सेवाओं तथा सरकारी कर्मचारियों के

महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देना है। ये दिवस नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि सुशासन, सतत विकास और जन कल्याण के लिए एक सक्षम एवं समर्पित लोक सेवा तंत्र अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर विभिन्न देशों में ऐसे सरकारी विभागों, संस्थानों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। ये दिवस युवाओं को लोक सेवा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए भी प्रेरित करता है तथा प्रशासनिक व्यवस्था में नवाचार, ईमानदारी, दक्षता और जनहित की भावना को बढ़ावा देता है। आधुनिक समय में जब नागरिकों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, तब लोक सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी पहुंच सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही ये दिवस सरकारों को ये अवसर प्रदान करता है कि वो अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करें और जनता के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के नए उपाय अपनाएं। इस प्रकार ये दिवस जन सेवा, सुशासन, सामाजिक न्याय और सतत विकास के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अभी हमने आपको साथियों जानकारी दी संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक सेवा दिवस के बारे में। कार्यक्रम में और भी जानकारी हम आपको देंगे, उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं ये गीत जो है फिल्म वीर ज़ारा से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और गुरदास मान की। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

साथियों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जो था फिल्म वीर ज़ारा से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, उदित नारायण और गुरदास मान की। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने। अब साथियों, कार्यक्रम में बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून यानी आज के दिन मनाया जाता है। ये दिवस आधुनिक ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की स्थापना की स्मृति में आयोजित किया जाता है। 23 जून 1894 को फ्रांस के पेरिस स्थित सोरबोन विश्वविद्यालय में पियर डे कॉबर्टिन के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। जी हाँ साथियों, और जिसके परिणाम स्वरूप 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन ग्रीस के एथेंस में हुआ। इस दिन को आधिकारिक रूप से वर्ष 1948 से मनाया जा रहा है। साथ ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य खेलों के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य, अनुशासन, मित्रता, सम्मान, उत्कृष्टता और विश्व शांति के मूल्यों को बढ़ावा देना है। दुनिया भर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, ओलंपिक रन, जागरूकता कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियां

और फिटनेस अभियान आयोजित किए जाते हैं जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग भाग लेते हैं। साथ ही ये दिवस ये संदेश देता है कि खेल केवल जीत या हार का माध्यम नहीं है, बल्कि वो लोगों को जोड़ने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और वैश्विक एकता को मजबूत करने का साधन भी है। और ये थी जानकारी विश्व ओलंपिक दिवस के बारे में। और साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और कहा भी गया है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। क्योंकि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आज के जीवन में अत्यंत आवश्यक माना गया है। समय पर भोजन, पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। जीवन की भागदौड़ में अपने स्वास्थ्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। स्वयं का ख्याल रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों का ख्याल रखना। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जीवन में संस्कार और शिष्टाचार की भी कितनी अहम भूमिका है। तो आपको बता दें कि संस्कार और शिष्टाचार मानव जीवन की वो अमूल्य धरोहर हैं जो व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं। संस्कार हमें अच्छे विचार, नैतिकता, अनुशासन और बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। और अंत में हम कह सकते हैं कि संस्कार मनुष्य की पहचान है और शिष्टाचार उसकी सुंदरता। उम्मीद करते हैं साथियों, आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर से हम यही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पर्याप्त आराम कीजिए और व्यायाम करिए। नमस्कार।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया।
1: आप सुन रहे हैं AIR रोहतक और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार का।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ प्राशर फाउंडेशन की पहल है, जो अंगदान, उत्तक दान और देह दान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
2: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं हूं आरजे सागर। इस टाइम जो शो आप सुन रहे हैं उसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। इसको आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गेन इंडिया को। दोस्तों, हम यानी कि ऑर्गेन इंडिया काम कर रहे हैं इस एक दिशा में कि हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लोगों तक पहुंचा सके। आज हमारे साथ हैं हर्षवर्धन साहब। हर्ष साहब के बारे में बात थोड़ा सा आपको बताएं तो, वो किडनी रेसिपिएंट है, यानी कि इनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और इन्होंने रिसीव करी थी। रिसीवर को रेसिपिएंट बोला जाता है। इनको किडनी दी थी इनकी माता जी ने। इनकी उम्र है 38 वर्ष। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे हर्ष जी, आपका स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: कैसे हैं आप?
3: मैं बहुत ठीक हूँ, आप बताइए।
2: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। हर्ष, थोड़ा सा हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए कि आप किस तरह के घराने में पैदा हुए, लाइफस्टाइल कैसा था उस परिवार का?
3: मैं राजस्थान में एक छोटा जगह है दौसा के पास, मेरा गांव है भांडारे। तो मेरा जन्म वहाँ हुआ 1985 में। मैं एक राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ।

0: रेगुलर फैमिली होती है मिडिल क्लास, उसी तरह का हमारा परिवार था।
1: फिर भी किस तरफ रुझान रहा आपका चाइल्डहुड से ही, क्या स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा था या एक सेडेंट्री बच्चे थे, किस तरह की चीजें थी?
0: नहीं, मेरी एक्चुअली फैमिली में सभी लोग तो आर्मी से जुड़े हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो मैं भी मेरे जब स्कूल टाइम था सबसे हैंडबॉल खेला करता था, तो स्पोर्ट्स तो शुरू से ही हमारे मतलब परिवार में ही रहा है।
1: तो बेसिकली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आप आते हैं, तो एक्टिव आपकी लाइफ रही शुरू से ही, उस तरफ थोड़ा रुझान ज्यादा रहा होगा फिजिकल वर्कआउट करना। तो काफी हद तक मैं ये यहाँ पर अंदाजा लगा सकता हूँ कि जंक फूड ये सब चीजें नहीं खाते होंगे, नहीं कंज्यूम करते होंगे आप।
0: अभी आज के समय में तो मतलब कुछ कुछ लोग खाने लगे हैं, लेकिन उस वक्त जब मेरा मतलब टीनेजर वाली एज थी, उस वक्त तो बड़ी रेस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी और अवॉइड ही करते थे 99.9%।
1: ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके डायग्नोसिस से पहले के जीवन के बारे में जानना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है कि हम लोग जो लिसनर्स इस टाइम आपको सुन पा रहे हैं, उन लोगों तक ये चीज जरूर पहुंचा पाएं कि क्या क्या गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं जो आमतौर पर हम लोग कर देते हैं, जिनको बाकी लोग अवॉइड करते हैं। तो कोई भी ऐसी गलती या मिस्टेक, या आप कह सकते हैं कि आपके एंड पर बॉल ड्रॉप हुई, जहां पर कोई चीज स्किप हुई, बता पाएं जो हमारे लिसनर्स के काम आ पाए, तो इट वुड बी ग्रेट हेल्प।
0: मैं आपको बताऊं, मेरा जो डिजीज हुआ था ना, मैं बाई बर्थ मुझे एक ही किडनी था, अब वो भी मुझे पता नहीं था, ना मेरी फैमिली को किसी को पता था। जब मैं 17 साल का था तब मुझे ऐसा ही बैक पेन हुआ, तो हमने हमारे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ टेस्ट कराए, तो उनको कुछ डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ इशू है, तो उन्होंने फिर मुझे नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफर किया। तब मुझे जाके पता लगा कि मेरे बाई बर्थ एक ही किडनी है और वो भी मतलब धीरे धीरे श्रिंक हो रही है और मे बी इन फ्यूचर वो बिल्कुल काम करना कभी बंद कर दे। तो सच लाइफस्टाइल डिजीज भी आप नहीं कह सकते हैं मेरे वाले केस में, लेकिन हाँ बाकी जो आज की डेट में जो किडनी डिजीज यंगस्टर्स में हो रही है, उसके बहुत बहुत बहुत ज़्यादा जो एक कारण है वो लाइफस्टाइल है, जंक फूड्स हैं और आज की जो लाइफस्टाइल है, लोग बिल्कुल अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं, फिटनेस पे नहीं देते हैं, तो वो एक कारण होगा।
1: जी जी जी। हर साहब, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँ, तो एक तो ये पॉइंट हुआ कि आप एक किडनी के साथ ही हुए थे, तो क्या मैं इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बोल सकता हूँ या कॉमन है ये?
0: नहीं, इसको रेयर आप बोल सकते हैं कि हर, जैसा मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि हर 10 लाख में एक आदमी ऐसा होता है जिसके एक ही किडनी होती है।
1: ओके, क्या उससे हमारी बॉडी की फंक्शनलिटी में कोई फर्क पड़ता है?
0: नहीं, देखिए इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी।
1: ओके।
0: जिनके एक ही किडनी थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुत अच्छा, पूरी उम्र पाई, और आई थिंक इन द एज ऑफ 80 उनकी डेथ हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि किसी के एक किडनी है तो उसको कोई फर्क पड़ता है, थोड़ा सा उस किडनी पे एक ही किडनी होगी तो दो किडनी काम करेंगे और एक सिंगल किडनी काम करेगी, लोड ज्यादा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आपकी कोई थ्रेड है आपके लाइफ के ऊपर।
1: तो ये क्या कंडीशन थी जो डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी किडनी श्रिंक हो रही है धीरे धीरे?
0: एक्चुअली मेरे केस के अंदर मतलब जेनेटिकली डेवलप नहीं हो पाई।
1: ओके।
0: तो जब मैं मतलब छोटा एज में था तो इतना जितना जरूरत होती थी उतना किडनी ने काम किया, लेकिन उससे उसका ग्रोथ नहीं हुआ, तो जैसे ही उम्र बढ़ी जब उसको काम ज्यादा करना पड़ा तब वो धीरे धीरे से खराब होना स्टार्ट हो गया।
1: 17 की उम्र में बैक पेन हुआ, टेस्ट कराया तो पता लगा एक किडनी है, यहाँ तक की कहानी हमको समझ में आ रही। उसके बाद का क्या प्रोसेस रहा ट्रांसप्लांट के पहले? और जी
0: देखिए 2007 में मुझे पता लगा था मुझे एक ही किडनी है, तो जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बताया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से पूरी लाइफ इस एक सिंगल किडनी पे भी आप निकाल सकते हो, जस्ट आपको अपना लाइफस्टाइल जो भी है वो चेंज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेस का कुछ काम नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मेरे स्कूल टाइम हैंडबॉल खेला करता था, तो सबसे पहले तो मेरा गेम ही छूट गया। जैसे मुझे पता लगा तो डॉक्टर ने सबसे पहले तो मुझे मना किया कि आपको इस तरह के गेम्स नहीं खेलने जिसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेना पड़े या अपनी आपके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर आए, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़े। मैं उसके बाद अब जैसे मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ 2017 में हुआ, तो 2007 से 17 तक 10-11 साल तक मैं एकदम हेल्दी लाइफ मैंने जी, और शायद भगवान को यही मंजूर था कि 2017 में जाके मेरा वो जो किडनी थी वो बिल्कुल बंद हो गई, और डॉक्टर ने सिर्फ मुझे सजेस्ट किया कि आपको या तो डायलिसिस कराना पड़ेगा या आपको ट्रांसप्लांट करना।
1: तो बंद जो आपकी किडनी हुई काम करना, क्योंकि एक ही थी, वाजिब सी बात है, कितना टाइम लगा उसको बंद होने में 2007 से लेकर जब तक वो फुल्ली

0: थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मुझे बता देते थे कि ये कंडीशन होती है, आपको मतलब ऑल्टरनेट जो थेरेपी है उसकी ओर जाना पड़ सकता है, या तो ट्रांसप्लांट पे जाओ या डायलिसिस पे जाओ, ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। क्योंकि मेरे क्रिएटिनिन जो लेवल था 2007 में कुछ 1.23 था जब डायग्नोस हुआ, लेकिन वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 4-4.5 तक पहुंच गया 10 साल में। तो जी तब डॉक्टर्स ने बोला कि बोला हो सकता है आपको बहुत जल्दी ट्रांसप्लांट करवाना पड़े या डायलिसिस कराना पड़े। मेरा माइंड मेकअप मेरा भी और मेरी फैमिली का भी ऑलरेडी डॉक्टर्स ने पहले ही कर दिया था।
1: सिम्टम्स जान सकता हूँ मैं, जब पूरा कंप्लीट फेलियर हुआ उस टाइम पे क्या सिम्टम्स आते थे आपकी बॉडी में?
0: देखिए ये बहुत मतलब ये लोग किडनी डिजीज को साइलेंट किलर बोलते हैं, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं ही हूँ कि मैं मुझे जिस दिन मैं ट्रांसप्लांट करवाने गया हूँ उस दिन तक भी कोई सिम्टम नहीं, और सिर्फ एक बार मुझे जो 2007 में पेन हुआ था वही वो सिम्टम आया था। शायद भगवान को वो मुझे बताना था कि भाई तेरे को ये इशू है, और तेरे को अगर बाकी 10 साल तक मुझे कोई सिम्टम आए नहीं किसी भी तरीके की।
1: तो बेसिकली आप मॉनिटरिंग कर रहे थे रेगुलरली, इसलिए आपको 2017 में पता लगा कि अब इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, राइट?
0: जी।
1: हर्ष साहब, हम अपने शो के आखिरी फेज में हैं। अब थोड़ा सा पोस्ट ट्रांसप्लांट लाइफ के बारे में बताइए, अब कैसा जीवन है, कैसा महसूस करते हैं, जीवन को लेकर नजरिया बदला है नहीं बदला है, जो भी चीजें आप बताना चाहें।
0: देखिए ट्रांसप्लांट के बाद तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा ही फील करता हूँ, क्योंकि एक फेज तो मेरी लाइफ में ऐसा आया था कि परिवार में एकदम डर का था कि अब इसका ट्रांसप्लांट हो रहा है अब क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब ट्रांसप्लांट के बाद जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है, मतलब फिटनेस की तरफ भी हम वह बढ़ गए हैं और एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। लाइफस्टाइल जो चेंज मुझे अपनी टीनेज में करनी थी वो शायद मैं ट्रांसप्लांट के बाद अब कर पा रहा हूँ।
1: आपकी माताजी का जीवन कैसा है?
0: वो एकदम स्वस्थ हैं और अपने सारे रूटीन के जो भी काम है वो खुद ही अपने आप करती हैं, तो कोई किसी तरह का कोई मेडिकेशन उनका नहीं चल रहा है अपना ऑर्गन डोनेट करने के बाद। कुछ समय के लिए 3 महीने के लिए शायद चला था, उसके बाद से उनका कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई उनको किसी भी तरह की कोई इश्यूज नहीं है डोनेट करने की वजह से।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: बहुत हेल्दी लाइफ जी रही है वो।
1: उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो ऑर्गन डोनेशन इस कॉज के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं?
0: देखिए हमारे देश में अभी इतनी अवेयरनेस है नहीं, अब जिस परिवार पे बीतती है ना शायद वही इस कॉज के बारे में जानना चाहता है ऑर्गन डोनेशन के बारे में, लेकिन एक कॉमन मैन तो उस बारे में शायद बात ही नहीं करना चाहता है। तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शायद अवेयरनेस की हमारी कंट्री में। तो शायद जितना भी ये बैकलॉग है जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं ऑर्गन की, अगर हम अवेयरनेस इसी तरह बढ़ेगी जैसे ऑर्गन इंडिया बहुत कर रही है बहुत अच्छा काम, अगर लोगों में अवेयरनेस आएगी तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कई लोगों को मेरे जैसे तो अच्छा जीवन मिल पाएगा।
1: जी, और ऑर्गन्स हमें डोनेट भी करने चाहिए। एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि 8 लोगों को नया जीवन दिया जा सकता है, एक इंसान जब इस दुनिया से जाता है अगर वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करते तो 8 लोग, और आप यकीन नहीं मानेंगे कितने लोग हैं जो हर साल अपना दम तोड़ देते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि अब शायद इस वेटिंग लिस्ट में उनके नाम को वेटिंग लिस्ट से हटा दिया जाएगा, उनको ऑर्गन मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर इस शो को समअप करना चाहूंगा। हर्ष साहब, कोई भी ऐसी चीज जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो कृपया करके प्लीज फील फ्री।
0: मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आपके श्रोताओं को कि अंगदान के बारे में जागरूक हों, अंगदान के लिए आप प्लेज करें। अगर आपके जीवन के बाद अगर किसी को जीवन मिल सकता है तो इससे बड़ा दान आपके जीवन में कोई नहीं होगा। आप कहीं भी की मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कितना भी पैसा दे दें, लेकिन अगर आपने किसी जीवन दे दिया किसी को तो उससे बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं है। तो आप अंगदान करें, ज्यादा से ज्यादा अंगदान करें।
1: एक टर्म यहाँ पर सर ने यूज करी है, दैट इज प्लेज। प्लेज एक फॉर्म होता है एक तरीके से, आप प्रण लेते हैं कि मैं अपने अंगदान करूंगा, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार को जरूर इत्तला दें, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है वो इवेंट होता है और जब टीम आती है अंग लेने के लिए, अगर परिवार मना कर देता है किसी भी तरीके से भी ऑब्जेक्शन रेज करता है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। इसलिए प्लेज फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आपके अंग निकाल लिए जाएंगे या मेरे अंग निकाल लिए जाएंगे अगर मैं प्लेटफॉर्म साइन करता हूं, तो उसका मतलब ये है कि मैं इस अभियान का हिस्सा बन चुका हूं। लेकिन जरूरी है कि इसके बारे में पता हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को। हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं organindia.org, जाकर आप चेक कर सकते हैं प्लेज के बारे में। प्लेज अगर आप साइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष।

0: अब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वो जो पेनफुल टाइम था उसको रिविजिट करने के लिए थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट टू अस।
1: थैंक यू सागर जी।
0: थैंक यू दोस्तों, अब इसी नोट पर आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें, नमस्कार, गुड बाय।
2: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में।
3: दोस्तों, अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर संपर्क कर सकते हैं। अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख

0: रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बिसे सिंह मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा।

श्रोताओं, पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर बी के दुबे से बातचीत का विषय रहेगा प्याज का भंडारण व आगामी फसल की देखभाल। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7:00 गांवों में आपसी भाईचारा, इस विषय पर बलवान सिंह नरेश से बातचीत सुनेंगे। फिल्म संगीत कार्यक्रम का प्रसारण होगा देर शाम 7:30। रात्रि 8:25 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। एक फिल्म से कार्यक्रम का समय रहेगा रात 9:15। पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत श्रोतागण सुनेंगे रात 10:30। हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम थारी पसंद, इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात 9:30।

श्रोताओ, अब आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात्रि 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:30 बजे युवा संसार कार्यक्रम में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत वनस्पति शास्त्र का अध्ययन और रोजगार संभावनाएं, इस विषय पर डॉक्टर आशा शर्मा से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रातः 7:15 पर हमारे सेहत कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेखा डाबला से भेंटवार्ता सुनेंगे, विषय रहेगा सिरदर्द व माइग्रेन, कारण उपचार व बचाव। प्रातः 7:25 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे, एनसीईआरटी द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम को सुनेंगे दिन में 12:30 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया समय रहेगा दिन में 2:45 पर। दिन में 2:30 बजे खेत खलिहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा गन्ना फसल की देखभाल।

शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भेंटवार्ता, एक किसान से कार्यक्रम के अंतर्गत अनीता गौतम से भेंटवार्ता सुनेंगे। शाम 7:00 ग्रामीण संसार कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम बालक मंडली सुना जा सकता है। सुगम संगीत कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 8:25 पर। प्रातः 9:00 कार्यक्रम रहेगा मन भावन। दिन में 1:10 पर पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम को सुनेंगे देर शाम 7:30। रात 9:15 पर कार्यक्रम रहेगा एक फिल्म से। पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत, समय रहेगा रात 10:00। प्रातः 8:30 लोक संगीत कार्यक्रम में हमारे कलाकार रहेंगे विजेंद्र सिंह नरवाल और साथी। ये थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब कुछ स्थानीय सूचनाएं। थाना IMT जिला रोहतक से प्राप्त सूचना के अनुसार दीपिका पुत्री ईश्वर यह लापता है। हुलिया इस प्रकार है, रंग सांवला, लंबूतरा चेहरा, पतला शरीर, कद है 4'9", सूट सलवार पहने हुए हैं। आपको इनके विषय में कोई भी जानकारी हो तो थाना IMT जिला रोहतक से संपर्क कर सकते हैं। एक अन्य सूचना हमें थाना मछरौली जिला झज्जर से प्राप्त हुई है। इसके अनुसार साधना पुत्री बाकेलाल यह घर से लापता है। रंग साफ है, कद है 5'1", काले रंग का सूट पहना हुआ है। इनके विषय में आपको कोई भी जानकारी हो तो थाना मछरौली जिला झज्जर से संपर्क कर सकते हैं। सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया। हरियाणा 1994 में हुए अपर यमुना बोर्ड समझौते के अनुरूप राजस्थान को उसके हिस्से की पानी की आपूर्ति पाइपलाइन से करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो संदेश से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, गीता मानव जीवन को सही दिशा देने वाली अमूल्य धरोहर है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया और कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह सपना साकार हो गया है। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों को सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान भी किया।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नेफेड ने

0: प्रकार से नेफिक्स डॉट इन दृष्टि ईआरपी और नाफेड कल्याण ये चार पहलों की शुरुआत तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटों के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान मिलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के नई दिल्ली स्थित आवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बीच पानी को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में वर्ष 1994 में हुए अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुरूप राजस्थान के हिस्से के पानी की आपूर्ति सहित तो दोनों राज्यों से जुड़े जल संसाधन सिंचाई एवं पेयजल से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि समझौते के अनुरूप राजस्थान को उसका निर्धारित जल पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस बारे समझौता ज्ञापन पर सोमवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा,
2: पानी की मैनेजमेंट हर व्यक्ति तक पानी पहुंचे उसको लेकर के बैठकें हो रही, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने किया है कि लखवार और किशाऊ रेणु का बांध उसका ऊपर पिछले दिनों सहमति बनी है और जो वो पानी आएगा वो हमारे राजस्थान दिल्ली और हरियाणा के लोगों को मिलेगा, उसको लेकर के कि वो पानी कैसे राजस्थान जाएगा उसको लेकर के आज यहां बैठक हुई है और उसमें पिछले दिनों ये भी सहमति हुई थी कि जो बरसात का पानी जो बहा करके चला जाता है उस पानी को भी राजस्थान में पहुंचाया जाए।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाएं उत्तर भारत के राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनके क्रियान्वयन में जल्द तेजी लाई जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि दोनों राज्यों में पुराने समझौते को पाइपलाइन के माध्यम से लागू करने पर सहमति बनी है।
3: दोनों ने जो हरियाणा से सरप्लस वाटर जो 94 में उनका एमओयू हुआ था आज उसका नया एमओयू करके पानी का जो उनका अधिकार है जितना तय हुआ है उतना ही दायित्व से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे तक एमओयू का ड्राफ्ट बनेगा और मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने एक्सचेंज करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री सहित कुल 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं और ये 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व जज के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार मिला। इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाली एक अमूल्य धरोहर है। गीता हमें कर्तव्य, आत्मविश्वास, संयम और मानव कल्याण का मार्ग दिखाती है। वे जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के समापन समारोह को चंडीगढ़ से वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया कर्मयोग का संदेश आज भी पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि आज जब विश्व अनेक चुनौतियों और तनावों का सामना कर रहा है तब गीता का संदेश शांति, सद्भाव और सकारात्मक सोच की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के संबंध सदैव मजबूत रहे हैं, विशेष रूप से हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग निरंतर बढ़ रहा है जो हमारी गहरी मित्रता का प्रतीक है। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने आज कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए 11 शिकायतों की

0: में से 6 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 5 मामलों को लंबित रखा गया है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई है और संबंधित विभागों को उनका जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान लाढ़वा में तैनात खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 2 निरीक्षकों के मामले पर भी चर्चा हुई। दोनों अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और अब उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं।
1: इसमें पहले FIR दर्ज थी, उसमें जो अक्यूज थे वो खुद हाईकोर्ट के अंदर गए, हाईकोर्ट में उनकी बेल रिजेक्ट हुई तो मैंने उनको तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए। और दूसरी जो एक शिकायत थी कोऑपरेटिव की, उन्होंने समय मांगा है लेकिन उसके इससे पहले मैनेजर को सस्पेंड करके बहाल कर दिया था, उनको सस्पेंड भी किया, जब तक उसका निपटारा ना हो उसको दोबारा सस्पेंड किया।
0: चैंत गांव में पानी की समस्या को लेकर चल रहे धरने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा बागवानी नर्सरी अधिनियम 2025 धारा 22(1) के तहत हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को मंजूरी दिए जाने से किसानों को राहत मिली है। इस नए नियम के लागू होने से राज्य में बागवानी नर्सरियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए एक मजबूत नियामक प्रणाली तैयार होगी, जिससे फर्जी या बिना पंजीकरण के चल रही नर्सरियों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सकेगी। आज जींद में बागवानी अधिकारी ख्याली राम ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
2: हरियाणा सरकार द्वारा कल कैबिनेट में हरियाणा बागवानी नर्सरी अधिनियम को पास किया गया है। इससे किसानों में काफी खुशी की लहर है। इससे किसानों को गुणवत्ता युक्त पौधे मिलने सुनिश्चित होंगे। पहले किसानों को समस्या ये आती थी कि कई बार जिस किस्म के पौधे समझ कर वो पौधा लेके आता था उस किस्म का पौधा उसको मिल नहीं पाता था, इसकी वजह से उसको काफी इकोनॉमिक नुकसान होता था। परंतु अब चूंकि इसमें कोडिंग सिस्टम लागू किया गया है, इससे किसानों को अच्छी गुणवत्ता के पौधे मिल पाएंगे तथा जो उनकी भूमि की उपज है वो भी बढ़ेगी। इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा तथा निमेटोड जैसी समस्याओं से भी बचा जा सकेगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया। हरियाणा 1994 में हुए अपर यमुना बोर्ड समझौते के अनुरूप राजस्थान को उसके हिस्से के पानी की आपूर्ति पाइपलाइन से करेगा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भैया ने अनिल भाई के राम राम। पर मौसम की बात करा तो भाई कह भी देंगे मिला भैया आगे पास से नियम कतर है, लेकिन फिलहाल भाई मौसम का जो पूर्वानुमान कह सके हैं और जो फिलहाल मौसम का भी एक तामा जामा जो चल रहा है, कितने बरस गया कितने रह गया, तो कई बार के वो जो मौसम की सूचना है भाई पूरा हरियाणा प्रदेश के जो पश्चिमी एरिए बता दिए या उत्तरी एरिया बता दिया दक्षिणी बता दिया, तो उसमें थोड़ा सा आगा पाछा उसके है हवाएं का जो दबाव है वो ज़्यादा चक्रवात बढ़ जाए तो भी दो चार घंटे पहले भी आ जाए, एक आध दिन पहले भी आ जाए और कितने भी बरस भी जा कितने रह भी जा, तो थोड़ा सा मौसम का हिसाब किताब देख के हमने काम करने हैं। आज भी चौपाल तबार की बात करा, रोहतक का भी मौसम जो रहा है भाई अपने 2-1 बजे के आसपास अच्छी तेज सी हवा आई, अंधोड़ सा आया, फिर अपने बूंदाबांदी आई, कितने 1-2 आंगल बूंद भी है, कितने चादर बे भी है, कितने भी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी है। पहले अपना हिसार साइड का एरिया है उसमें अच्छी बारिश हुई थी, कितने आ गया कितने रह गया, तो अपना जो पानीपात भाई अपना दें हैं तो वो थोड़ा सा मौसम का हिसाब किताब देख के फिर अपना पानीपात दें, और भी घर ने भी जो अपना जींस पड़ी है दीवार दीवार का सारा अपना खुली ना हो नूनी नहीं हो को टपका नहीं आ जाए उसका हम ध्यान रखें। और बाकी भाई देखो कि जितने भी हमारी जो फसल हैं मौसम के हिसाब से चल रहे हैं, और फिलहाल भी धान की हम बात करें जो भाई अपना रुपाई की तैयारी कर रहे हैं करण लाग रहे हैं, कुछ अपना भाई प्योत जो बन लाग रही हैं उनमें अपना पानी पात दे हैं रख रखाव करे हैं, रुपाई खातर भाई 20 से 25 दिन जो पुरानी नर्सरी है वह हमने रुपाई करनी है, लाइन से लाइन का जो फासला है।

0: 20 सेंटीमीटर का रखना है, पौधे से पौधे का 15 सेंटीमीटर का रखना है। और यदि वे नर्सरी 40 से 45 दिन पुरानी हो जाए है, तो भाई जो पौधे हैं उनमें कलने की जो संख्या है वो कम हो जाए है और पैदावार इसमें घट जाए है। रुपाई करते समय हमने ध्यान रखना है कि भाई 1 से लेकर 1.5 इंच की गहराई तक हमने पौध लगानी है, और बाकी इसमें जो उर्वरक है और जो पोषण है बुआई करते समय रुपाई के भाई ठीक बाद 7 से 10 दिन के भीतर खाद का जो इस्तेमाल है वो हमने कर लेना है। मिट्टी की जांच के आधार पर भाई 1 एकड़ जो हमारा खेत है उसमें भाई जो यूरिया है, सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटास है, सही मात्रा में हमने प्रयोग इसका करना है। और बाकी भाई देखो ये तो करिए हमने धान की रुपाई से जो संबंधित बातें हैं ध्यान रखने वाली उनके बारे में। और ई भजन एक बातचीत सुनवा दे हैं, जो भजन प्याज का भंडारण करना कर रखा है वो भी किस तरह से जो हमारे प्याज हैं सुरक्षित रहें और जो आगामी जो हमारी फसल है उसके बाद में उसमें हमने की सावधानी रखनी पड़ेगी, तो सुने भाई ये पूर्व प्रसारित बातचीत।
1: भाइयों आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा प्याज की जो फसल अभी आपकी तैयार हुई है उसका भंडारण कैसे करें और आगामी जो मौसम आ रहा है उसको देखते हुए कौन सी हमने किस्म लेनी है और किस तरह की काश्त करनी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर बी के दुबे जी को। आप सिलारू जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो संस्थान है बागवानी विभाग का, वहाँ से आप पधारे हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद संजय जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब जिन भाइयों ने फसल तैयार कर ली है अब तो वो भंडारण किस तरह करें उसके ताकि काफ़ी लंबे समय तक वो टिकी रहें और भाव हमने बढ़िया मिले तब हम उसे बेच सकें।
2: बिल्कुल सही है। इस समय रबी की जो फसल है
1: जी
2: वो लगभग हार्वेस्टिंग हो चुकी है और इस समय हमारे किसान भाई इसको भंडारण में रखने की व्यवस्था कर रहे हैं या उसको मंडी ले जा रहे हैं।
1: जी
2: जो किसान भाई भंडारण कर रहे हैं या उसको भंडारण करना चाहते हैं उनसे हमारा एक ये राय है उनको कि वो अपने प्याज को अच्छे से सुखा के ही रखें। अगर सही से क्योरिंग किया हुआ और अच्छे से सुखाया हुआ प्याज भंडारण किया जाएगा तो उसमें जो भंडारण में होने वाला नुकसान है उसको काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब अच्छी तरह से सुखाया हुआ का आप थोड़ा सा बताओगे किस कैसे माने भाई अच्छी तरह से सूख गया है?
2: अच्छी तरह सुखाने का मतलब है कि इसको हम फील्ड में सुखाते हैं
1: जी,
2: जहाँ से उसकी खुदाई की
1: जी
2: वहीं पर हम पत्ती से उसके कंद को ढक देते हैं घंटे को
1: जी,
2: और ढकने के बाद 3 दिन तक हम धूप में सुखाते हैं।
1: अच्छा।
2: धूप में सुखाने के बाद हम 4थे दिन ने कटिंग कर लेते हैं, उसकी जो
1: तना है
2: उसको काट लेते हैं 2 इंच 1.5 इंच ऊपर से, और काटने के बाद फिर उसको छायादार स्थान पे जिसको हम शेड क्योरिंग कहते हैं छायादार स्थान पे हम 7 से 10 दिन तक रखते हैं।
1: अच्छा।
2: ऐसा एक लंबा सा हीप बना देते हैं जिसकी ऊंचाई 1 मीटर रहती है और चौड़ाई करीब 1.5 मीटर, ऐसा लंबाई में हम उसको रख देते हैं। रखने के बाद उसमें जो प्याज की कटी हुई पत्तियां हैं या धान का पुआल है उसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं,
1: ढक देते हैं।
2: इस ढकने से क्या होता है कि प्याज के अंदर सारा जो कलर है उस वेराइटी का उभर के आ जाता है।
1: अच्छा।
2: बढ़िया कलर डेवलप होता है। दूसरा, प्याज के अंदर जो खेत की गर्मी है वो निकल जाती है
1: जी।
2: तीसरा ये कि उसके अंदर छिलके डेवलप हो जाते हैं। प्याज में जितने छिलके होंगे समझो कि वो प्याज भंडारण में उतना अच्छा टिकेगा
1: जी।
2: तो ये सारा जो प्रोसेस करने से ये हमारे छिलके हैं उसकी नमी है
1: जी,
2: और प्याज बढ़िया से कलर में आ जाता है। तो इसको हम क्योरिंग करना कहते हैं और इसको करना अति अनिवार्य है अगर आप भंडारण में अपने प्याज को रखना चाहते हैं।
1: यानी कि आपने बताया कि अगर इस तरह का आपने तरीका अपनाया है फिर तो रहेगा ठीक, वरना इसमें खराब होने के चांस
2: खराब होने के।
1: अब डॉक्टर साहब कई बार भाई थोड़ा समय कम होता है और या कहें कि उनके पास में जगह कम होती है तो पूरा काम इस तरह से नहीं हो पाता है तो उसमें उनको दिक्कत आ सकती है फिर।
2: तो इसी के लिए मैंने कोई अलग से जगह नहीं बताई
1: जी,
2: मैंने ये कहा कि खेत से उखाड़िए और वहीं सुखाने के लिए रख दीजिए
1: जी।

0: इसके बाद अगर आपके पास छायादार जगह नहीं है तो आप खेत में ही कहीं
1: पेड़ के
0: पेड़ के
1: नीचे
0: नीचे
1: या
0: या किसके उसमें कोई शेड में रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन
1: जी
0: पेड़ के नीचे कहीं छायादार स्थान पे आप उसको ढेरी बना सकते हैं
1: जी
0: और उस ढेरी को थोड़ा सा ढक के रख सकते हैं। ढकने से वो एक प्रोसेस है कि
1: जी
0: उसके अंदर सारा पिगमेंटेशन का जो कलर का एक जो
1: रंग बढ़िया जाएगा
0: रंग
1: उसमें।
0: बनता है
1: जी
0: वो सब में एक जैसा
1: जी
0: रंग उभर के आता है। देखिए हमारी रबी की प्रजाति NHRDF रेड,
1: NHRDF
0: रेड
1: लाल जी
0: हाँ L28 के नाम से भी इसको जानते हैं।
1: जी जी
0: ये प्रजाति बहुत अच्छे हरियाणा में उगाई जाती है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है।
1: जी
0: ये काले रंग का प्याज होता है,
1: जी
0: डार्क रेड, और इस प्रजाति को एक कलर में देखना तभी संभव हो पाएगा
1: जी
0: जब हम उसका अच्छे से क्योरिंग करेंगे, जो अभी आपको पीछे बताया मैंने।
1: जी
0: तो क्योरिंग करने के बाद ही इसका भंडारण करेंगे तो भंडारण में जो 20 से 30% तक नुकसान होता है उस नुकसान को हम थोड़ा
1: बचा
0: सा कम
1: सकेंगे।
0: कर पाएंगे। अदरवाइज ये नुकसान पिछले बार 50 से 60% तक भी देखा गया है,
1: यानी कि आधे के करीब खराब हो जाता है
0: आधे
1: इसमें।
0: के करीब खराब हो जाता है अगर
1: जी
0: हमने सावधानी नहीं रखी
1: बट
0: तो।
1: जी अब डॉक्टर साहब, हमने उनको स्टोर करना है, काफ़ी लंबे समय तक के लिए रखना है, तो कौन कौन सी विधियां हैं जिसमें कि हम भंडारण कर सकें।
0: पहला तो ये है कि हमें प्रजाति का चयन करना पड़ेगा।
1: अच्छा
0: अगर हमें भंडारण करना है तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका कि उत्पादन बहुत अच्छा है लेकिन वो भंडारण में अच्छी नहीं है, भंडारण के योग्य नहीं है।
1: अच्छा
0: तो हमें भंडारण के लिए जैसे कि हमारी संस्थान के द्वारा कुछ प्रजातियां निकाली गई, एग्रीफाउंड लाइट रेड, NHRDF रेड, L28, अर्का निकेतन, पूसा रेड,
1: जी
0: IRI की वैरायटी हैं।
1: जी
0: इस तरह की कई और प्रजातियां हैं जो कि भंडारण में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देती है। हमारे यहाँ से अभी NHRDF रेड 4 करके वैरायटी निकला है,
1: अच्छा
0: NHRDF रेड 3 निकला है।
1: जी
0: तो ये प्रजातियां भंडारण में बहुत ही अच्छी हैं, इनमें मात्र 10 से 15% लॉसेस आता है। हमारे बहुत सारे किसान भाई अपने प्याज का इतने अच्छे से क्योरिंग करते हैं,
1: जी
0: इतने अच्छे से खेत में, देखिए वो जब हम खेत में अपनी प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस का एक एक असर हमारे भंडारण पे पड़ता है। जैसे
1: जी
0: हमने बताया प्रजाति का चयन, यूरिया का कम इस्तेमाल,
1: अच्छा
0: पोटाश की मात्रा कम ना होना जमीन में, मिट्टी में पोटाश की का लेवल
1: पूरा होना
0: पूरा
1: चाहिए
0: होना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि पोटाश अगर पूरा होगा तो उसका जो TSS है वो बढ़ेगा और TSS बढ़ने से उसकी जो भंडारण क्षमता है वो बढ़ेगी। अगर आपने यूरिया को ज़्यादा डाला तो यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करने से भंडारण में वो प्याज ज़्यादा खराब होता है।
1: अच्छा
0: तो ये कुछ। दूसरा पानी का जो है, पानी हमें निश्चित अंतराल पर लगाना चाहिए।
1: जी
0: अगर ड्रिप पे प्याज लगाते हैं बहुत अच्छा प्याज होता है, भंडारण में भी बहुत अच्छा टिकता है।
1: जी
0: आप प्याज को जब हमारा टॉफल हो जाता है ऊपर से गिर जाता है प्याज मैच्योरिटी के टाइम पे,
1: जी
0: उसके करीब एक हफ्ते के बाद प्याज को निकालना चाहिए। उससे क्या है कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे कुछ किसान भाई प्याज को उखाड़ने के एक दिन पहले पानी लगा देते हैं और भरे हुए खेत से ही उखाड़ते
1: निकालते
0: हैं,
1: हैं
0: तो ऐसा प्याज जो है वो भंडारण में अच्छा नहीं टिकता है, ये जल्दी ख़राब हो जाता है।
1: जी
0: दूसरा, प्याज को भंडारण करने से पूर्व उसकी जो छटाई है वो अच्छे से करना चाहिए, जैसे कि 4 साढ़े 4 सेंटीमीटर से लेके और 6 सेंटीमीटर की जो साइज का प्याज है जिसका
1: जी
0: डाया
1: जी
0: वो प्याज भंडारण में उपयुक्त होता है।
1: तो यानी कि ये हमने इसका श्रेणीकरण भी करना पड़ेगा,
0: श्रेणीकरण भी,
1: ग्रेडिंग
0: ग्रेडिंग
1: इसकी
0: भी बहुत
1: करनी
0: जरूरी है,
1: पड़ेगी हमें।
0: बिल्कुल, क्योंकि
1: जी
0: छोटा प्याज सूखता जल्दी है
1: जी
0: और बड़ा प्याज में फुटाव जल्दी आता है, तो
1: जी
0: इसलिए ये दोनों कैटेगरी को हम मंडी बेच देते हैं। मंडी सेल करने के बाद जो अच्छा प्याज है बस उसी का भंडारण करते हैं।
1: जी
0: और चूंकि यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो हमारे किसान भाई प्याज उगाते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो भंडारण अवश्य करें, क्योंकि
1: जी
0: बिना

0: भंडारण के आप उसका पूरा जो मुनाफा है वो आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस समय जब प्याज पूरे भारत से निकलता है और रेट हमारे बहुत ज़मीनी लेवल पे होते हैं, तो इसमें अच्छे रेट लेने के लिए ये तभी संभव है जब हम 3-4 महीने के लिए अपने प्याज का भंडारण करेंगे। तो निश्चित ही आपको 2 गुना 3 गुना
1: भाव
0: उसका
1: मिल
0: प्याज
1: जाएगा
0: का भाव मिलेगा।
1: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया कि सबसे पहले हमने किस्मों का चुनाव करना है, ऐसी किस्म लेनी है जो कि भंडारण के लिए उपयुक्त हो, सही हो,
0: जी,
1: एक तो बात आपने ये बताई। दूसरा, वो हमने क्या तरीका अपनाना चाहिए?
0: दूसरा यह है कि प्याज का, जैसे मैंने बताया कि अच्छी प्याज की क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए, बीज का जो कहीं अच्छी संस्थान से बीज लें।
1: जी।
0: दूसरा, बीज समय पर रोपित करें। जैसे कि हम कहते हैं कि नर्सरी, रबी प्याज की नर्सरी 50 से 60 दिन, 60 दिन से ऊपर की नर्सरी का रोपाई नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत किसान भाई कभी कभी 80 से 90 दिन हो जाती है उस नर्सरी की रोपाई करते हैं, तो ऐसा प्याज भी भंडारण में खराब होता है।
1: अच्छा,
0: तो सही टाइम पे नर्सरी का, सही अवस्था जो हो नर्सरी की, उसी में रोपाई करें। तीसरा, मैंने बताया कि नत्रजन खाद का उपयोग कम करें।
1: जी,
0: पोटाश का जो
1: लेवल पूरा
0: स्प्रे
1: रखें।
0: है वो 60 दिन के बाद 18-0-46 करके आता है फूलिया फर्टिलाइजर,
1: अच्छा,
0: उसका जो है वो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 2 स्प्रे करें, उससे गंठा अच्छा बनता है
1: जी,
0: और उसमें भंडारण में टिकने की उसमें क्षमता भी डेवलप होती है।
1: जी। अब डॉक्टर साहब, भंडारण की बात करें तो भंडारण के लिए किस तरह का तरीका हमने अपनाना चाहिए?
0: भंडारण के अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग स्टेट में उनके अपने अपने लोकल तरीके हैं।
1: जी,
0: लेकिन हमारे हरियाणा में टाट, बांस का टाट बनाते हैं
1: जी,
0: और उसमें हमारे किसान भाई भंडारण करते हैं। ये टाट जो है बाज़ार में 10 से 15 हज़ार रुपए में एक टाट उपलब्ध है
1: जी,
0: और इसकी, इसमें लगभग हम 40 क्विंटल तक प्याज स्टोर कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: 1 एकड़ में छटाई करने के बाद अच्छा प्याज, भंडारण योग्य प्याज
1: जी
0: 80 क्विंटल तक हमें मिल जाता है।
1: अच्छा,
0: तो 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों को 2 टाट की आवश्यकता होती है
1: जी,
0: और ये 1 टाट लगभग अगर सही से उसको रखा, दीमक से बचाव किया, क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करते रहे तो दीमक भी नहीं आती और इसको लगभग 8 से 10 साल तक उपयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: एक टाट को
1: जी,
0: जैसे कि हमारे केंद्र पर हमने इसको करके देखा है और ये 15 साल हो चुके हैं और आज भी वो टाट का हम लोग उपयोग कर रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, टाट ये आप जो बांस की जो बनाते हैं वो?
0: बिल्कुल
1: उसी को आप
0: बिल्कुल
1: कह रहे हैं
0: उसी
1: ना?
0: का मैं टाट।
1: अच्छा, तो वो जो आप बता रहे 40 क्विंटल तक उसमें स्टोर कर सकते हैं, तो उसका साइज क्या रहेगा, आकार क्या रहेगा उसका?
0: आकार उसका जो रहता है वो 1.25 मीटर उसकी चौड़ाई होती है
1: अच्छा,
0: और लगभग 5 या 6 मीटर उसकी लंबाई होती है।
1: अच्छा,
0: उसके ऊपर सिरकी का
1: जी
0: छप्पर,
1: छप्पर सा
0: टाइप
1: बना
0: का
1: हुआ
0: बनता है
1: जी,
0: और चूंकि सिरकी रखते हैं, सिरकी के ऊपर हम लोग जूट के जो बैग आते हैं पुराने फटे हुए, उन बैग को भी ऊपर से रखे या पॉलीथीन बरसात में करके थोड़ा सा पानी उसके अंदर न जाए उसकी एक व्यवस्था करते हैं और इसमें प्याज बहुत अच्छे से टिकता है।
1: जी,
0: हमारे कुछ ग्रोअर हैं, कुछ हमसे जुड़े हुए किसान भाई हैं जिन्होंने इस पद्धति से किया है
1: जी,
0: और मुझे बड़ा खुशी इस बात की कि 40 क्विंटल जो उन्होंने प्याज स्टोर किया उसमें उन्होंने जब अक्टूबर नवंबर में उस चाल को खोला
1: जी
0: तो उसमें मुश्किल से 10 केजी उनका प्याज खराब निकला।
1: जी,
0: तो
1: 40 क्विंटल में सिर्फ 10 किलो,
0: केवल 10 किलो के लगभग उनका प्याज खराब हुआ
1: जी,
0: क्योंकि उन्होंने अच्छी सिक्योरिंग करके रखा, अच्छी वेराइटी का उपयोग किया और जो भी एक प्रैक्टिसेस रिकमेंडेड हैं
1: जी।
0: उनका उपयोग किया। तो
1: अब डॉक्टर साहब, जो भाई बोरी में बांध के रखे हैं अपने घर में, स्टोर कर रहे हैं, तो उनमें फिर क्या कुछ देखभाल हमने करनी चाहिए?
0: बोरी में प्याज रख सकते हैं लेकिन बोरी में जो हम

0: पर स्टेकिंग करते हैं वो स्टेकिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीचे का प्याज दबता है,
1: अच्छा, जो मतलब एक के ऊपर
0: एक
1: एक
0: के
1: जो बोरी
0: ऊपर एक
1: रखते
0: रखते
1: हैं।
0: हैं,
1: जी
0: तो वो स्टेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 तक का ही करना चाहिए।
1: जी
0: बहुत से किसान भाई बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, और उसमें भी लिनो बैग वगैरह जो परफोरेटेड बैग हैं उनमें रख सकते हैं।
1: अच्छा, एक और है डॉक्टर साहब कि जो कच्चे घर होते हैं उसमें भाई अपने जमीन पर ही उसने फैला दे हैं, तो वो भी तरीका ठीक है? उसमें क्या कुछ ध्यान रखे हैं?
0: जमीन पे फैलाएं या जैसे भी हो अपने विवेक से उसको करें, ये मान के चलें कि प्याज में वेंटिलेशन या हवा का
1: आवागमन।
0: आवागमन अच्छा होना चाहिए।
1: जी
0: हवा का आवागमन अवरुद्ध हुआ
1: जी
0: कि प्याज हमारा सड़ना चालू हो जाएगा,
1: जी
0: तो इस चीज़ का हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना होगा।
1: डॉक्टर साहब, बीच बीच में क्या कुछ देखभाल इसकी करनी पड़ेगी जो हमने स्टोर कर रखा है?
0: स्टोर एक बार प्याज जो मैंने बताया कि अच्छा 4.5 से लेकर 6 सेंटीमीटर का बढ़िया प्याज, कटा हुआ, सड़ा गला, डिजीज, बीमारी
1: बीमार
0: युक्त, इन
1: जी,
0: सभी को हम अलग कर देते हैं।
1: ठीक है।
0: अच्छा, और एक साइज का प्याज जो हम भंडारण करेंगे, एक बार आपने प्याज को मई जून में अगर भंडारण कर दिया, बढ़िया से उसको सही कर सेट कर दिया, तो इसके बाद फिर बीच बीच में आपको डेली डेली क्या मतलब 15-20 दिन के बाद आपको एक बार ऑब्जर्वेशन करते रहना है,
1: नजर मार
0: कि
1: लें उसमें।
0: नज़र मारते
1: जी
0: रहना
1: जी
0: है कि कहीं कोई ख़राब तो नहीं हो रहा है।
1: जी
0: दूसरा, ये जब भी जहाँ भी चाल या इसको टाट को लगाएंगे उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उसको कहीं छायादार स्थान पर ही रखें, डायरेक्ट धूप ना लगे।
1: जी
0: दूसरा ये कि ऊंची जगह पर हो ताकि बरसात का पानी ना उसके आसपास टिके, ह्यूमिडिटी
1: जी
0: रहेगी तो ख़राब होगा। अक्सर इसका जो दिशा है वो अगर उत्तर दक्षिण में रखेंगे तो लंबाई उत्तर दक्षिण में जब रखेंगे तो 1 मीटर चौड़ाई होने की वजह से पूरा पश्चिम वाली हवा उसमें बराबर मूव करती रहती है,
1: हवा लगती रहेगी
0: और
1: उसमें।
0: हाँ हवा
1: जी
0: लगती रहती है, तो हमारा जो प्याज जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप बात करें कि जिन भाइयों ने आगे फसल लेनी है तो उसमें कौन सी किस्म लें और बीज उसका कहाँ से मिलेगा, इसकी
0: बिल्कुल,
1: जानकारी हो तो।
0: ये बहुत ही आज के समय का इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अब हमारे किसान भाई आगे आने वाले खरीफ मौसम की तैयारी में सब जुट गए हैं,
1: जी
0: और आगे 15 जून के बाद, 15 जून क्या 20 जून के लगभग मोस्टली हमारे किसान भाई सोइंग करते हैं,
1: जी
0: और 20 जून से लेके और जुलाई तक इसकी हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं, खरीफ प्याज की
1: जी
0: नर्सरी तैयार करते हैं,
1: जी
0: और उसके बाद उसको हम अगस्त में रोपाई करते हैं, और इसकी फसल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बाजार में आ जाती है।
1: किसमें डॉक्टर साहब, कौन से लें?
0: किस्में इसमें खरीफ मौसम के लिए दो बहुत ही उपयुक्त किस्में हैं
1: जी
0: जो कि NHRDF संस्थान के द्वारा निकाली गई हैं, और इनका क्वालिटी बीज हमारे सलारू केंद्र पर उपलब्ध है।
1: जी
0: एक
1: डॉक्टर
0: प्रजाति
1: साहब, एक
0: है,
1: बार संस्थान का नाम बता दो हिंदी में।
0: संस्थान का नाम है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, और इसमें जो प्रजातियां हैं
1: जी
0: वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड,
1: एग्री फाउंड
0: डार्क
1: डार्क
0: रेड
1: रेड।
0: जिसको कि ADR भी शॉर्ट में कहते हैं।
1: जी
0: दूसरी प्रजाति है L83,
1: L83, 83, 883।
0: 883 नई प्रजाति है,
1: जी
0: और इसका हमारे पूरे भारत में बहुत ही से डिमांड है,
1: अच्छा
0: और हरियाणा में चूंकि नई प्रजाति है
1: जी
0: इसका बीज भी कम है, लेकिन हमने अपने केंद्र पे इस बीज को उपलब्ध करा रखा है। हमारे पास 2 क्विंटल के लगभग ही बीज है,
1: अच्छा
0: और जो किसान भाई पहले आ जाएंगे हम उनको पहले उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास एग्रीफाउंड डार्क रेड प्रजाति का भी बहुत ही अच्छा बीज
1: उपलब्ध
0: इस
1: है।
0: समय उपलब्ध है।
1: जी
0: क्योंकि यहाँ पे मैं एक और बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई खरीफ का प्याज लगाएंगे निश्चित ही इस साल उनको मुनाफा जरूर होगा। कैसे?
1: जी
0: इस साल पानी बरसात रबी के मौसम में होता रहा है,
1: जी
0: और रबी के

0: मौसम में जो बरसात हुई उससे भंडारण में आशंका है कि प्याज खराब हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो जब प्याज अगर खराब होगा तो प्याज की घरेलू बाजार में प्याज की कमी हो सकती है
1: जी,
0: और वो कमी हम खरीफ प्याज से पूरी करेंगे तो निश्चित ही खरीफ प्याज का जो रेट है वो अच्छा मिलेगा।
1: जी।
0: तो
1: डॉक्टर साहब, इसमें आपने दो किस्में बताई हैं, बीज कितना लेना पड़ेगा इसमें?
0: बीज इसमें 1 एकड़ के लिए लगभग 4 किलो बीज लगता है। 1 हेक्टेयर में हम 8 से 10 किलो बीज संस्तुत करते हैं, प्रमाणित करते हैं इसको।
1: जी, तो इसमें फिर पहले बताया आपने कि पहले इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी।
0: जी, इसकी बीज की नर्सरी तैयार करनी होती है और नर्सरी को हम लगभग 20 जून के आसपास इसकी बिजाई कर देते हैं
1: जी,
0: और बिजाई करके 500 एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लगभग 500-600 स्क्वायर मीटर एरिया लेके और उसमें हम बीज की नर्सरी तैयार करते हैं। और ये जो रोप है, नर्सरी है, ये 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि पानी बरसात पे, अगर मौसम बादल नुमा रहा
1: जी,
0: और बरसात होती रही तो 50 दिन में ही नर्सरी तैयार हो जाती है, अन्यथा 55 से 60 दिन की नर्सरी हम
1: 2 महीने से पहले पहले
0: 2 महीने से पहले पहले हम इसको रोपाई कर सकते हैं। और
1: रोपाई का तरीका क्या रहेगा?
0: रोपाई का तरीका ये है कि जब भी हम बरसात की प्याज लगाते हैं तो उस समय जो क्यारी है उठी हुई बने,
1: अच्छे
0: समतल क्यारियों में
1: ना लगाएं।
0: हमारे किसान भाई इसको रिज बना के भी लगा सकते हैं, डोलों पे लगा सकते हैं
1: जी।
0: और डोलों पे लगाने के लिए किस खेत को बढ़िया से तैयार कर लें, उसमें पहले से खाद डाल दें, DAP, यूरिया, FYM, ट्राइकोडर्मा से मिक्स किया हुआ वर्मी कंपोस्ट, पूरा 1 एकड़ के क्षेत्र में उसको डाल दें और डालने के बाद फिर बाद में डोल बना दें ट्रैक्टर से।
1: अच्छा।
0: और उन डोलों पे अगर प्याज लगाएंगे तो निश्चित ही प्याज बहुत बढ़िया होता है और उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा आता है।
1: डॉक्टर साहब, कितनी उत्पादन कितना हो जाएगा
0: इसमें? हमारी ये जो प्रजातियां हैं इनमें उत्पादन, हम जो एवरेज उत्पादन है केवल उसी की बात करेंगे, ये उत्पादन 200 से और 250 कुंटल ही हम बताएंगे। अदरवाइज हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने 350 कुंटल तक प्याज निकाला है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, MP है, इन क्षेत्रों में 300 कुंटल तक प्याज आता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में यहाँ पे अगर मौसम अच्छा रहा, मौसम ने साथ दिया, तो निश्चित ही यहाँ 250 से और 300 कुंटल के बीच में उपज आती है इस प्याज के।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अपने जो रबी की फसल है उसका हमने समुचित प्रबंध करना है, सही देखभाल करनी है और अच्छी तरह से उसका भंडारण करना है, और आगामी जो खरीफ की फसल है उसके लिए आपने बताया कि बीज उपलब्ध है, भाई अपना संपर्क कर लें सलार जो संस्थान है करनाल के पास में, वहाँ से आप बीज लेके आ सकें और इसकी नर्सरी तैयार करके और बाद में इसकी रोपाई कर दें। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर BK दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये आपने सुनी बातचीत, भाई प्याज का जो भंडारण है, घर पर जो हमारे प्याज रखे हैं किस तरह से भी उन्हें ठीक ठाक हम रख सके हैं, और अगली फसल की तैयारी में कौन कौन सी किस्में हमने लेनी है और के हमने ध्यान रखना है। और भाई ई भैया ने सुनवाते हैं रागनी, गायक कलाकार हैं धर्मेंद्र कुमार और उनके साथी।
3: दखे जीते जीते मैं घूमया

बनावण खातर सोना चांदी लाया मैं मून फेरे खड़ी होगी।

sun.

भाई सात मंजिल योरे नीची डाटे बावने स्टेशन बम्बई के वे मोरी बंदारे सब छाटे।

की पोगी सल्ला सोनीपत में आने उतरे जहाँ का यो महाराज जल्ला प्रेम ने खचाई।

बैठलिए घूम कने काली लारी गोहाने में आने उतरे झांकी है तसील मारी राशत में।

ये आपने सुनी रागनी में, गायक कलाकार थे धर्मेंद्र कुमार और उनके साथ थे। और भाई चलते चलते ये है, मौसम बदलाव में है, बाजरे की बिजाई हमने करनी है, तो थोड़ा सा हम ध्यान रखें, बदलते मौसम का हम ध्यान रखें, क्योंकि भाई महंगी जो खाद है, महंगे बीज हैं, हाइब्रिड जो बीज हैं वो हमने मिले हैं। और बाकी जो भैयान भाई अपनी खड़ी फसलों की हम बात करा, कपास लगा रखी है, उसमें थोड़ी बहुत थोड़ी अच्छी भाई बारिश हुई है, तो थोड़ी बहुत जो उसकी नुड़ाई गुड़ाई है, ताकि ताकि भी ज़मीन थोड़ी सी भुरभुरी रही जा, खरपतवार उसमें ना जामे। अगर समाज से भी आऊँगे इब्बे तो कोई छोटा मोटा सांटी का पेड़ है, कोई कोंदरे का है, कोई डिल्ले का है, या कोई बेल है, या फिर घनी कचरा की जो बेल है वो कई बार उसमें हो जाए हैं, और भी कई तरह के जो गाजर घास हैं वो हो जाए हैं, कई तरह के दूसरे भी जो घास हैं जो नई नई प्रजाति घासा की आ रही हैं, नाम भी नहीं उनका, बेरा के है भाई छोटे छोटे पत्ते के। शुरुआती दौर से खुडा में तो भाई चलो हमने आड़ दी, और भाई पेड़ के आसपास हम कसोला भी काट दें, लेकिन कई बार जड़ा में कई ऐसी पर्वती बेल हो जाए छोटी मोटी, जो आगे चल के सब बण का रूप धारण कर लें, जिससे नाम थे पता हमने चल रहा है पर्वती बेल। एक बार अगर भाई पेड़ पर चढ़ गई तो फिर पाछ नुए नहीं मेरा पट, अभी कौन सा पेड़ के नीचे इसकी जड़ है, बड़ा ध्यान था, बाद में हमने देखना पड़ेगा। समय रहते कोई भी इस तरह के जो खरपतवार हैं अपनी कपास फसल में निकालते रहें, और जो भी भैयान भाई बिजाई करनी चाहिए, गुवार की हम बात करा, बाजरे की हम बात करा, बीज अपना एरिया के हिसाब से, मौके के हिसाब से लें, और जिला स्तर पर जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके जो निर्देश हैं, उनकी जो भी गाइडलाइन है, वो अपने जाके ना भाई पता कर सके हैं कौन सी किस्म कौन सी बढ़िया, क्योंकि बाजरा में देखो कई तरह की फसलें हैं, पुड़िया खातर जो भाई ले हैं जिसमें भी बाजरा भी अच्छा निकले, और जो पुड़ी फरड़ा है वो भी भाई बढ़िया हो जाए, कई से हो जाए मोटे डंडे से, जिसमें हम देखा कि भाई पुड़िया के टाइम पे गंडा सीधम बाजरा काटते हैं तो उसकी सानी बढ़िया नहीं बनती, तो इसके लिए जिला स्तर पर जो भी कृषि विज्ञान केंद्र भाई उठे संपर्क कर सके हैं। और बाजरे की और भी अच्छी किस्में आ रही हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा है, कैल्शियम की मात्रा है, और बहुत खाने में स्वादिष्ट है, जिस तरह अपना भाई सी 306 देसी गेहूँ की बात करा, तो जिला स्तर पर जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उड़े मिले, जो प्राइवेट दुकानदार हैं उनके चकाचौंध तो बच के, और जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, या फिर भी अपना हरियाणा बीज विकास निगम है उड़ तो भाई बीज ले सके हैं। इसके अलावा जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सार, जो भी हमारे किसानों की सेवा में है, उड़ भी भाई इसकी जानकारी ले सके हैं। नहीं तो भाई फिर जो अपनी ई मौसम के नाम से ऐप है, मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सार की, वो अपना एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करके, और उसमें भी भाई अपना रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, फूलों वाली हैं, वैज्ञानिकों के संपर्क सूत्र हैं, उसमें मौसम की जो जानकारी, साप्ताहिक भी जानकारी है, रोज़ की भी जानकारी है, फसल आने वाले रोग हैं, बीज उपचार हम किस तरह करें, तो उसमें भी हमें मदद मिलेगी इन सब बातों का ध्यान रख के। और फिर भाई हम जो अपने खेती बाड़ी काम है वो करते हमने रहना है।

0: और भाई इससे एक साथ आज का कृषिगत कार्यक्रम का समाप्त एक भाई सुनिंग कार्यक्रम ग्रामीण संसार और ग्रामीण संसार कार्यक्रम में भजन भाई रागनी भी सुनवाएंगे, बातचीत भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले भी हम जिक्र करें कि जो मौसम फिलहाल का चल रहा है खूब अच्छी बफर गर्मी दिन में कदे बादल हो गए कितने भाई एकदम से मौसम सुहावना हो गया बढ़िया हो गया कितने भी आस पास गुआंढ सुवंड बारिश आने लग रही है कितने एकदम से तेज़ गर्मी है। तो ये जो एक मौसम की बदलाव जिसने हम कह सकते हैं भाई कित कदे ठंडा कितने गर्म है और जो ये मौका हो है सर्द गर्म का, सर्दी में अगर खांसी जुकाम हो जाए तो वह जल्दी कंट्रोल में आ जाए, लेकिन गर्मी का जो एक तासीर बिगड़े उड़ी है बिगड़ जाए है सर्द गर्म अगर हो जाए है तो बहुत सारा टाइम जो भी ठीक कोण में ले ले है और जो भाई हमारा शरीर का एक तापमान है वो ऐसा बिगड़ जाए है खूब बढ़जुरी शरीर में रहे। दूसरा ये भी हो जाए है कि भाई हम बदलता मौसम है गर्मी है सर्दी है कदे भाई हवा चालगी कदे बादलवाई होगी कितने फुहार आएगी, इस मौसम के अंदर जो शीतल पेय पदार्थ हैं आमतौर पर जो हम कहते हैं भाई बर्फ़ का पानी भी कह सकते हैं या फिर शीतल पेय पदार्थ जो हम दुकानों पर खरीद के लें वहाँ वो भी हो सके हैं या फिर शिकंजी भी हम बनावा, शिकंजी बहुत अच्छा एक विकल्प है स्वास्थ्य के लिए गर्मी में, लेकिन उसमें अगर ज़्यादा बर्फ़ हम डाल लें हैं और उसकी तासीर ज़्यादा ठंडी हो जाए है तो किसी न किसी रूप में जो ठंडे पदार्थ हैं वो भी हमने एकदम सेज जाए हैं और भी हमारे जोड़ों के दर्द गोड्डों के दर्द कई तरह की जो बीमारी हैं सर्द गर्म बिगड़ना खांसी जुकाम गला बैठ जाना हरकत रहना अड़जुरी रहना इस तरह की दिक्कत हमारे आ जाए तो भाई इस मौसम में थोड़ा सा खान पान काम ध्यान रखें, घने शीतल पेय पदार्थ वो न खावें और एकदम से जो फ्रिज का पानी है वो हमने एकदम नहीं पीना पसीना में, थोड़ा सा जब तापमान ठीक हो जाए हमारे शरीर का, यानी कि जो बुजुर्ग कराया करते हैं पानी पीने से पहले माथे का पानी लगा करते जिस तरह भी बुखार में लगा करें माथे पर ठंडा पानी की पट्टी ताकि तापमान है जो शरीर में गर्मी है वह उतर जाए फिर बुखार भी उतर जाए, इसी तरह थोड़ा सा अगर ठंडा पानी मुँह में धो लें माथे का पानी लगा लें दो चार मिनट इंतज़ार कर लें और फिर हम पानी पीवें और भी फिर इसे मौके नहीं रहते कि हमारे किसी तरह का भी खांसी जुकाम हो जाए, थोड़ा सा इस मौसम में हमने ध्यान रखना है। बाकी भी देखो बदलाव की अगर बात चल रही है तो ये तो मौसम की तब्दीली है लेकिन जो हमारे एक विचारों की तब्दीली है जो हमारा एक आपसी भाईचारा में जो बदलाव आ गया, आज तक 30 साल 35 साल पहले का ज़माना हम देखें तो बोले अभी फलाना आदमी नहीं दिखता किस जा रहा भाई खैर खबर उसकी कि मैं खूब ऐसा प्यार था बाण बेटी सिर लड़ाया करते, आज ज़माना ऐसा आ गया कोई किसी दौर बैठे नू का भाई के लो भाई ने तो बड़ा एक विचारा का विभिन्नता इसमें आ गई, स्वार्थ इसमें आ गए, गर्ज दीवाना देश भी हो गया, स्वार्थ तभी दोस्ती भी करने लगे, तो ये सारा जो सिस्टम एक बन गया किस तरह से भाई जो हमारा आपसी भाईचारा है वो बिगड़ता जा रहा है। इस बारे में एक पूर्व प्रसारित बातचीत है, श्री बलवान सिंह जी चौपाल में आए थे साथ में श्री नरेश कुमार जी आए थे, तो सुनो भाई ये पूर्व प्रसारित बातचीत।
1: भाइयों गांव और भाईचारा दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, गांव वो अच्छा माना जाए है जड़े आपसी भाईचारा हो प्यार प्रेम हो बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान हो और सारी तरफ एक तरक्की जगह करता रहे, तो गांव में आपसी भाईचारे के बारे में आज बात करेंगे। हमारे बीच में दो महानुभाव हमने बुलाए हैं, परिचय करवाते हैं आपका। सबसे पहले हमारे बीच में श्रीमान बलवान सिंह जी पिछला जो कि गाँव गुढ़ाण से आए हैं और काफ़ी अच्छी उम्र है आपकी, बलवान जी का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: ठीक ठाक सो?
2: बिल्कुल ठीक ठाक।
1: घना ज्यादा मान रहे हो में?
2: ज्यादा सही
1: सही चादरा भी है और अपना टोपा भी सारे बढ़िया थे, लेकिन देखो बड़ा शरीर है थोड़ा ज्यादा हो जाए। चलो जी बहुत स्वागत आपका। दूसरे भाई है नरेश कुमार, नरेश लोहान भाई गांव अलेवात आए हैं। नरेश भाई ठीक ठाक हो?
3: बढ़िया जमा जी,
1: स्वागत है आपका भी। तो आप ठीक ठाक खेती बाड़ी घर परिवार?
3: हाँ जमा जी सारा मौज है जी, परमात्मा कृपा दे
1: मौज है। तो चलो हम बलवान अंकल जी से शुरुआत करते हैं। बलवान जी भाईचारे की जब बात आती है आपने एक अच्छा समय देखा है।
2: हाँ जी
1: है ना, तो थोड़ा सा बताओ अपना टाइम के बारे में।
2: हमारा टाइम सारा गांव एक होया करता,
1: अच्छा
2: कोई भी ऐसे मामले नहीं होया करते दो गांव तो बाहर निपट जा।
1: अच्छा
2: कोशिश ये रहा कर दी सारा गांव का आपसी इतना भाईचारा था अगर उड़े बैठ के निमटा लिया रे, थाने तहसील तो बहुत बारी देखी जा कर दी
1: वो को घना बड़ा के में
2: तो ना तो वैसे घना बड़ा के में मारी याद में तो होया ही नहीं।
1: अच्छा
2: मारा कभी ये मर्डर सर गोली गाली अब तक
1: ये तो आजकल के हो गए जी, पहले तो कड़वाया कर दे
2: पहले कोई ना करता भाई।
1: हाँ बिल्कुल
2: पुलिस

0: इसको वो है नहीं करना।
1: अच्छा, और इसके अलावा जैसे भाईचारे की बात करते हैं, भाई 36 बिरादरी का काम हमारा, सारे उसमें रसे बसे हैं, तो सबका ख्याल रखा जाए, पंचायत हो सबकी हो, और थोड़ा सबका ध्यान करें ऐसा।
0: महाराज जी सारे भाईचारा, चाहे कोई दूसरी कास्ट का हो, सारे कोई वो नहीं थे।
1: तो जैसे 36 बिरादरी की बात हम करते हैं कि भाई सबकी विकास, सबकी बात हो, सबके हित की बात करें।
0: पहले सबके हित की बात क्या कर दे,
1: जी
0: सारे कोई ऐसा नहीं था भाई किसी के तरफ कोई गलत शब्द कहे या कोई गलत
1: हाँ
0: बात कहे,
1: हाँ हाँ हाँ
0: लेकिन आपस में बैठ के सारे भाईचारा देते हैं, मान्या कर दिया, जो भाइया ने कर दिया फैसला, पांच भाई फैसला कर दिया
1: वो
0: मंजूर है,
1: मंजूर है।
0: कोई भी झगड़ा गांव में हो गया आपस में हो जाया करता,
1: जी
0: लेकिन पांच भाई बैठ जान जे पंचायत बैठ जान जी, जो पंचायत वाले फैसला कर देते वही मान्य होता दोनों थोक ने।
1: वो क्या करते हैं पंच जड़े परमेश्वर, है
0: अब वो
1: ना,
0: बात नहीं रही।
1: वो बात नहीं रही। चलो पूछते हैं नरेश भाई थे। नरेश भाई,
0: हाँ
1: गांव
0: जी,
1: तो आपका बड़ा प्रसिद्ध है,
0: हाँ जी बिल्कुल
1: बहुत
0: जमा जी, बहुत
1: ज्ञानी
0: बढ़िया
1: ज्ञानी
0: जमा
1: लोग
0: जी,
1: हुए हैं
0: हाँ जमा जी।
1: अड़ेवा गांव में।
0: अरे हम तो जी भी भाईचारा अब कायम कर रहे हैं जी, दोबारा हमने ऐसा कराया जी, हमें 10 आदमी से कर लिए जी, जो मतलब एक फोन करते हैं सारे इकट्ठे हो जा,
1: अच्छा
0: आई साल या कोई तालाब खोदा, ये जो एक मंदिर बनावा, हमें
1: अच्छा
0: 750 साल पुराना मंदिर था वो, मतलब छोटा था, ये बामू जी बड़ा निर्माण करने लाए रहे उसका,
1: 750 साल
0: हाँ
1: पुराना।
0: उसके कैर हम कदे देखे, जो बूढ़ा देख दिया आए न्यू कंधा आयु कैर हम न्यू देखे, उनका नीचे उसकी समाधि थी, इब हम पूरा बड़ा निर्माण करके उसका वो हमने मंदिर बनाना शुरू कर दिया, और पूरा भाईचारा जो भी कोई भी आओ उस पर जिसे भी दान पुण्य भी करे हैं, बहुत
1: हाँ
0: बढ़िया जमा भाईचारा, इतना मेल जोल कर लिया हमने, बहुत प्रेम प्यार बढ़ा रहे हैं इस बात में, हमें सारे भाईचारे इकट्ठे हुए करने हैं, हमारा सरपंच बहुत बढ़िया बढ़िया जी विनोद है,
1: अच्छा,
0: हाँ बहुत बढ़िया, वो भी उसमें 11,000 का वो कर गया, शो करके
1: चलो
0: गया,
1: देखो वो तो सबकी बात है, लेकिन
0: हाँ जमानियों
1: देख
0: बेचारा जमानी बहुत बढ़िया, हमारा इतना मेल जोल है काम में, ये भी बोर्ड के कर लिया हमने, जो परमात्मा बीच में कोई नहीं आई थी, कई साल में दिक्कत ही रही,
1: अच्छा
0: गरीब तो जमानी बहुत है, कोई हो नहीं हमारे गांव में, पीछे तो प्रकार का लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, प्रेम प्यार इतना बढ़िया है बहुत, और बढ़ाने लग रहे हैं,
1: और ये जरूरी भी है,
0: आयु जरूरी भी है जी, आप
1: बिल्कुल
0: जैसे हमें
1: बिल्कुल। बलवान
0: सरपंच,
1: जी, पहले देखो एक काम होया करता जिसमें सब न्योता निंदार की बात हम कराया करते,
0: हाँ जी
1: ब्याह में
0: हाँ
1: शादी
0: जी
1: में कोई बात आ गया, कुछ आ
0: हाँ,
1: गया, भाई एक लप बोझ नहीं पड़ गया, है ना, तो वो भी एक भाईचारे का ही रूप था,
0: वो भाईचारा का बहुत बड़ा रूप था, उसको मदद के लिए
1: मदद के
0: ये
1: लिए।
0: नोंदे घालिया करते
1: हाँ हाँ हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: ब्याह में आंदा हर आदमी जिसका नोंदा दिया करते वो 10 20 30 घाल जाता, जो पर मांगे से वो दे जाता,
1: देना और नहीं गाल
0: नए
1: करते,
0: घाल देता,
1: और
0: ये
1: 10 20 तो खुद घनी होगी आपके टाइम की, तो मतलब रुपया 2 2 रुपया बड़ा हो जाया
0: एक एक
1: करता।
0: रुपये भी पांच पांच तो ज्यादा ज्यादा होया कर दे भाई,
1: हाँ
0: 5 रुपये चालू कर दे, 5 रुपये ये पास
1: मांग
0: ले
1: जो
0: लेंगे,
1: थे वो, और
0: हाँ
1: 5 नहीं चलत,
0: मैं
1: ये होया कर दी। और ब्याह शादी में जैसे काम करवाना है, कोई बरात के लिए कोई इंतजाम करना और कुछ करना, तो ये सारी बस बातें बात रहेगी, मतलब सुनने में आओ है बस इसी के लिए।
0: अब उसकी जरूरत ही नहीं रही थी बीमारी आ गई, अब वो जरूरत नहीं रही, अब तो सब काम ठेके पर चला है,
1: हाँ
0: और पहले सारा काम भाईचारा करया करता,
1: भाईचारा कराया
0: लकड़ी
1: करता।
0: पाड़नी से तो कढ़ाई के वो खोदना है तो लोग में सारा भाईचारा बैठ के सारा सामान लेना हो, अग्गत जमाना जुटाना सब, बारात का प्रबंध करना सारा भाईचारा
1: बरात
0: करा,
1: बर्तन इकट्ठे कर लिया कर दे, खाट कर
0: सब
1: लिया कर दे बरात खातर।
0: बारात की खाट आ जाती, बर्तन घर घर मांग लें दे, अब तो सब कम बारात से आता है सारा ठेका काम है, भाईचारा की जरूरत ही नहीं मानते,
1: अच्छा, उस वक्त यो भी था कुछ रुस्सा मनाई होया करते नरेश भाई,
0: हाँ जी बिल्कुल
1: तो
0: मना
1: क्यों करे मनाओ
0: के लिया हमने
1: लेकिन वो
0: जी,
1: मना के ले आया करते।
0: हाँ आप बर का अंधा कोई बुजुर्ग ने बुला दे भाई इतियो करो इतियो मनाया कर, उसमें पूरा वो कर लेंदे, उसका शांत लगे उरियो कर लेंदे भाई, महाराज यू सारे से हो गया भाइयों का, उसमें करे कर दे, इसमें कदे न्यू नहीं मानी ने भाई, तो हमें दूसरे रहेगी ये
1: नहीं
0: पूरा,
1: ईब तो कोई बैठा है तो बैठा रहो,
0: हाँ इसलिए बैठा
1: कोई
0: रहा न्यू
1: कोई नहीं वो
0: सोचिए नहीं
1: करता,
0: भाइया ने न्यू
1: लेकिन
0: सोचा,
1: पहले क्यों करे कोई मान मनवार करके अरुण मना के ले आया करते, तेरे
0: मना के
1: बिना,
0: लिया
1: तेरे बिना
0: करते,
1: ब्याह नहीं होगा,
0: हाँ तेरे बिना भाई यू हमने तो दर्जिया ही छोरन ब्याह ले, तो
1: बस बस
0: या
1: बस।
0: ले तो हमारा काम नहीं तेरा काम है, तो कुकुरिया करे वो आपको 2 मिनट बाद से, और हो जाए करती सेटिंग, प्रेम प्यार इतने से भाइयों
1: हाँ
0: के,
1: हाँ हाँ
0: उसमें
1: बिल्कुल।
0: सारा सहयोग मिलकर न जी जाएगा ना, आप सारा काम वो कर दे पुराना हमारा यू
1: बलवान जी,
0: जमानी,
1: आओ को ध्यान में इस तरह की बात, कोई जैसे ब्याह शादी में कुछ इस तरह के बढ़िया ने।
0: बहुत आई है जी बहुत, मना मना के लिए,
1: हाँ
2: हमने इसे देखे तो मोड़ बांध के घुड़चढ़ी का डाउन ना उसके चौतरा बता के बैठा दिया थोड़ा। अच्छा। भाई आगे जब चलेगी जब मन लेगा तो।

0: मन लेगा तो
1: इससे पहले नहीं। और उन्हें आखिर में उठना पड़ता, चलना पड़ता, मना के लेंदे आप भाई वो फलाना नहीं आया, वो भाई ने मनाओ चलो हम भी चलेंगे थरा साथ और तुम चलो, तो उन्हें घरवाला ने भी ले जाएंगे और भाई आस पड़ोस के जो भाईचारा था सारा उड़ गया, भाई तुम्हें चलना पड़ेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई, इसमें कसूर है तो इसकी गलती मनवाएंगे तेरे द्वारा।
2: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: अरे भाई तेरा कसूर है, तेरे गलती मान ली है, कोई ऐसी बात को नहीं, और मान लेंदे जी कोई भी चाहे कि कुछ भी हो, मना के शादी में मना के ले आया कर दे
2: जी। अच्छा पहले भी कुछ न्यू भी था कि पंचायत में कह लो तो बड़े बुजुर्ग आया करते, अच्छी उम्र होया करती जिनकी, तजुर्बा था जिन्होंने जिंदगी का। अब ताती थोड़ी बदली, थोड़ा नया जब ढंग आया नरेश भाई, तो जब तक चुनाव आने लगे है तो गांव का माहौल खराब होने लग गया।
3: बस जी इसमें बड़ी दिक्कत आएगी, बुजुर्गों की चलती को नहीं, फिर तो सह सहन पुठे हट गए बेचारे, भाई चुनाव में डरन लग गए, इज्जत वाले आदमी पुठे हटन लग गए, भाई कोई नहीं तेरी चलती है जी, बच्चे मुड़े उठे लग गए हूँ, इस करके ना वो दिक्कत आएगी जी, मतलब भाईचारा में या तो नहीं तो पर देख के बुजुर्ग नहीं करेगा, एल सारा कुण बह गए भाई मैंने कह दिया, जो भी काम होंगे मैंने कह दिया, वो सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता जी, चाहे वोट देना है, चाहे किसी का भाईचारा गेहूँ कटवानी है, चाहे जीरी कटवानी, कुछ भी कर ही होना जी डाल का, वो सारा भाईचारा ये एक एक बूढ़ा कह दिता है, जाओ तारा काम हो जाएगा,
2: एक ही चाल कर दी,
3: एक एक चाले कर दी उस टाइम में जी, आप जैसे बुजुर्ग आदमी है ले कह दें दे, फिर
2: हो जाता जी बराबर के बुजुर्ग
3: आदमी
2: बैठे को ध्यान में आवा इसी बलवान जी, कि जो कोई बैठी पंचायत बनी हो बिना चुनाव के बनी हो, सर्वसम्मति से बनी हो,
1: सर्वसम्मति तो नहीं बनी, इलेक्शन जरूर हुए थे।
2: अच्छा
1: लेकिन इलेक्शन हमारा इतना वो गदर नहीं था जो अब मात रहा,
2: अब मात है।
1: मेरा ताऊ था 15 साल सरपंच रहा
2: जी,
1: 7 साल एक बार, 3 साल एक बार, 5 साल एक बार, 7 साल एक बार सुधा कलानोर का।
2: अच्छा
1: 7 साल कलानोर को डाल के एक पंचायती शुरू में 1952 में इलेक्शन हुए जब, और हम कभी भी किसी का घर वोट मांगने नहीं गए, सिर्फ एक मेरा ताऊ था ना वो खुद
2: जी,
1: वो ठे ठे थोड़ा में बैठ के और भाई उनसे कह आंदा भाई वो मान लें दे।
2: अच्छा लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा सम्मान था बड़िया का,
1: अब सारे बड़िया की मान जा कर दे, पहले पंचायत में बड़े आदमी आया करते
2: जी,
1: और जो कि मैं समझौता कर लें दे वो जिम्मेवार आदमी आया कर दे, भाई तने तेरे थोड़ा घर तेरे घर का जिम्मेवार तू है, और भाई वो वोट क्या आंदा भाई ये चीज करनी है तो तने वोट ली तो कर दी, अब वो बात नहीं है, अब पंचायत में जो बड़े बुजुर्ग आदमी है वो तो आते ही नहीं,
2: आते बताया नरेश भाई ने कि वो तो दूर हट गया है,
1: वो तो पहले दूर क्यों ना पता से उन्हें बेरा भी ये बालक मानने तो आते नहीं, नहीं मानने तो उड़ा जाएगा था फाजा के
2: जी जी जी जी जी जी, तो ये भी एक बात आ गई। और उसके बाद जब पंचायत में जब नए बालक आए, देखो नया काना जरूरी है ठीक है, लेकिन आप बड़े छोटे की कान कायदा जो वो जरूर होना चाहिए।
3: देखो जी मारे इलेक्शन होया सरपंच का, नौ बड़का ने 4,500 वोटा जीत्या नवा सरपंच।
2: अच्छा
3: नवा जमा छोटा छोरा है न्यू, आप बताए सरपंच होगा यू, जमा थोड़ी उम्र का छोरा है और वो 4,500 वोटा नौ बड़का जीत्या दिए बता,
2: ठीक बात
3: न्यू तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं कर न्यू, अपना बनाया कने इलेक्शन लड़िया और अपना कोई वो नहीं होया रोला रबदा किसी डाल का नहीं है, जो प्रेम प्यार जचाया कने।
2: अच्छा एक ये चुनाव है ना ये कई बार आपसी दुश्मनी भी पैदा कर दे,
3: बिल्कुल जी बड़े होंगे उनके समझौते सारी सारी उम्र लिखट दी बेचारे की एक में खड़ा पड़ दिया दो।
2: हाँ हाँ मतलब कोई हारे हुआ है या कोई दूसरे थोके हैं बलवान जी वो आपस में रंजिश पाल ले हैं,
1: बहुत ही नहीं पाल हैं, लेकिन हमारा गांव ऐसा है जी आज तक ये रंजिश नहीं, वे इलेक्शन लड़े हैं लड़ रहे हैं, कभी इलेक्शन हम झगड़ा नहीं कराया, कभी पीटा छेती नहीं करी, कभी मुकदमे और इलेक्शन खत्म होए उल्टा है उतना है वाए, ओए भाई हो जाए जा, कोई नहीं नहीं मानता भी वो हार गया इसने वोट नहीं दी भाई इसने दूर ना, फिर सारा काम का एक माहौल हो जाए
2: ये जरूरी है, क्योंकि ये सरपंच तो फिर उसके बाद सारा काम का है वो, ये नहीं कि भी उस पाने की ज्यादा करवाओ उस थोड़े की ज्यादा करवाओ नहीं उनकी ज्यादा विकास हो गया उसका, वो तो फिर सारा काम की इकट्ठी बात आती है।
3: बिल्कुल जी ये तो सच्चाई बात है जी,
1: अरे नए नए सरपंच बन जाए हमें बनना भी चाहिए उन्हें नए बालका, लेकिन उनका भी फर्ज ये बना है जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग उनसे सलाह मुशारा करके काम का
2: करते रहे,
1: उनसे हर चीज का सलाह लेनी चाहिए ये करा हम,
2: ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा पहले अपने गाँवों में अभी होते हैं खेल मान लीजिए पंचायती खेल होते हैं तो सारा गांव न्यू राजी राजी रहो जी, अगले भी गांव में खेल है 20 पंचायत आओगी 30 आओगी तो उनकी खाना पीना मान सम्मान उनका आदर मान करना सारा सब कुछ एक त्योहार सा मना है गांव में।

0: कुलदीप भी करे, हमारे काम में तो करेंगी।
1: अच्छा,
0: हाजी वाले में तो इस काम का न्यू पूरा हौसला जे सब कहे भाई, यू तने यू काम करना, तने यू काम करना, नहीं बैंड कने। और
1: हाँ
0: उसके आज मैंने पूरी इज्जत रखे हैं भाई, बैर नहीं इस बात का, नहीं हो जे भाई भाईचारा पूरा बढ़ा कर रखे हैं जी इस
1: आपका
0: बात
1: तो
0: में।
1: शिवरात्रि ने एक वो मेला भी लग गया करा और
0: हाँ
1: जंगल और
0: शिवरात्रि
1: वो
0: वहाँ होगा जी, ये फोकड़ का शिवरात्रि है, गौशाला का मेला लग गया जी, बड़ा बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा। हाँ जी जमानियों गौ माता का
1: और उसमें सारा काम जुड़ा है।
0: सारा काम जुड़ा है, जमा 36 बिरादरी, मतलब सब कह भाई को रह नहीं जावे भाई, इसमें निमंत्रण दे कहाँ बाटे थे भाई, ऊँ भी आवा भाई, दूध इकट्ठा करा मैं, जो
1: अच्छा,
0: जिसा भी होगा नहीं सामान उसमें इकट्ठा करके, और फिर भोजन करावा जी बड़े प्रेम प्यार दे
1: वाह।
0: गौ माता का भी, जिसा भी वो करा। हाँ जी आई साल
1: हाँ हाँ
0: उससे
1: हाँ
0: जी धर्मशाला ये सस्ता, देखो जी ये रल मिल के चल रही,
1: ये सब कुछ रल मिलकर कर दे,
0: वो नहीं चल
1: मतलब
0: रही जी भाईचारा नहीं होगा, नहीं ये चल रही नहीं है, ये बड़ी बड़ी संस्था है जी।
1: अब पहले बलवान जी आपने तो समय देखा होगा, जब माने कोई गरीब के ब्याह है कितने, छोरी का हो गया, कुछ हो गया, तो को सांग बुलवा लिया करते है, या कुछ इस तरह कर लिया करते कि उसको सारा लगाया करते
0: मंगाया कर दे जी, सांग आया करता,
1: आया करता
0: और
1: ना,
0: मदद भी दिया कर दे,
1: मदद
0: और
1: भी।
0: गरीब आदमी की वो भी मदद, सारा काम नहीं है भाई, यो तो गरीब आदमी है भाई, इसका चोटा मारियो
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: सारा
1: बिल्कुल,
0: काम जिसी गुंजा सो सबके मार के आया कर दे,
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: लत्ते
1: जी,
0: थे कपड़े थे तेल ताकि
1: हाँ।
0: कन्या दान और के मैं करके उनके भाई, इसका गरीब है इसका करियो के मैं।
1: आपने बीच में एक बात कही थी कि भी अब किसी ने जरूरत नहीं रही किसी की, सबके में ठिकप हो गया,
0: हाँ जी
1: तो इससे भी कहीं ना कहीं मन के अंदर फर्क आया है।
0: फर्क तो बहुत गणा आ रहा है, ये वो भाईचारा नहीं है,
1: जी।
0: एक दूसरे की पहले मदद होया कर दी, सारा काम भाईचारा बैठा के जब होया कर दा,
1: जी
0: अब तो ये हो गया भाई ना आया तो मत आओ भाई,
1: मत आओ, हाँ
0: बस ये है नहीं आया तो मत आओ भाई, काम चल ले रहा है ऐसे भी, काम तो सारा ठेकन दे रखा है, रोटी बनावनी है भी, खुवानी है भी, धोनी है भी, बांधनी है भी, सब ठेके
1: मतलब किसी के बिसर नहीं रह गए ये
0: ना,
1: तो।
0: किसी बेसर कोई नहीं।
1: अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं जब वो पहले भगवान की दया थे, दाने इतने हो जाया करते, घर कुणबा के में बेच के अपना काम चल जाया करता, अब तो भगवान की दया तो पैसा भी सबके पास हो गया, इस पैसे ने भी कहीं ना कहीं भाईचारा में फर्क गिरा है,
0: पड़िया है जी, इससे भी फर्क
1: बढ़िया
0: पड़िया
1: है।
0: है।
1: नरेश भाई क्या कहोगे
0: हाँ
1: आप,
0: जी बिल्कुल, इससे भी
1: क्योंकि जब समर्थ हो
0: यो
1: गए आपस में,
0: मतलब है अंकार हो गया
1: अहंकार।
0: इसके, इंसान के अहंकार होता रहा है, वे तेरे ने के करना इन ते संपूर्ण जिया देख लोड़े नहीं तेने, या नहीं हो गया वे मेरा बतेरा जुगाड़ है, मैं कर लूंगा
1: मैं क्यों
0: पीछे
1: जाऊं
0: का
1: किस,
0: सारा काम, मैं क्यों जाऊं उसके उसके पान क्यों करूं, पकड़ूं
1: जी
0: क्यों करूं, यार बात होने लगी ऐसे
1: जी जी
0: यू,
1: जी
0: इसमें तो गलत है यू। देखा हम भी, हम तो जी चार
1: मतलब,
0: भाई रह रहे, हम तो एक परमात्मा ने प्यारा है,
1: जी
0: हम आज भी एक जगह बैठा शाम ने,
1: बहुत अच्छी बात
0: जो भी
1: है,
0: करिए वह दिन में वे के करिया के करना तड़के ने, हम तो आज भी सलाह करके ने उठांगे वे, तने के करना तने मने के करना, हर चीज का
1: बिल्कुल
0: यार आखा जी
1: बिल्कुल।
0: भाईचारा में, और भी जिया जिस बात ने वे आखा हाँ गाम में परमात्मा की कृपा है
1: तो ये
0: पूरा।
1: बात तो बलवान जी कहीं ना कहीं भाइयों के बीच में बैठ के आपस में लगाओ प्यार, एक अपनापन, वो तो जरूरी है।
0: बहुत ज़रूरी है जी, पहले के था, पहले आपस में शाम को सारे बड़े बूढ़े भाई तारा सारा एक जा बैठ के हुक्का पिया कर दे,
1: हाँ जी,
0: एक नहीं आया तो उसने जो भाई वो फलाना नहीं आया,
1: वो
0: भाई
1: नहीं आया, बुझ जाओ भाई
0: क्यों नहीं
1: इसमें।
0: आया भाई, उसने पूछ गया हो भाई बीमार तो नहीं है, ईब चाहे कोई मर जाओ बुझण कोई नहीं था।
1: कोई नहीं जा। अच्छा, कि मैं ये जो मोबाइल चाल के फोन हो गया, इस पे सब कि मैं कह ले
0: हाँ
1: है इस पे अपने वो सब कि मैं
0: किसी भी
1: बातचीत
0: नुकसान नहीं
1: जब
0: कर जी,
1: कर दे कहीं,
0: बड़े फोन तो नुकसान नहीं
1: तो
0: तो मैंने
1: नुकसान क्या, लेकिन
0: मतलब
1: आदमी
0: ये
1: से आदमी दूर करे
0: दूर
1: है।
0: करे। हाँ यह तो बात सुन गई जी, छोटा बालक पढ़ाई में लाया दिए दूर बैठ के नौकरेगा, या ले मोबाइल ही देखे जे है मड़िया ना संभालो जी, मोबाइल दे दे बड़ा मोबाइल वो है उसी देखे जाएगा, नहीं सोचता भाई तो मड़िया पढ़ने खतर ला करके पढ़ ले
1: अच्छा,
0: इसमें।
1: इस भाईचारे में एक बात और थोड़ी सी, कि जो पढ़ा लिखा तबका था बलवान जी, पहले बड़े कुनबे थे, दो चार बालक पढ़ गए, कोई शहर में चला गया, कोई नौकरी लग गया, कोई अपने हो गए, तो उसके बाद शहर दोबारा गांव में आने का उसका जी नहीं करता, बच्चों समेत तो वो शहर में रच बस गया, शहर में अपनी छावा बना ली, तो उसके बाद भी गांव फिर वैसा का वैसा, मतलब बड़े बुजुर्गों की एक जिसे को कहो कि बोल है वो घट गया, संपर्क घट गया, वो अकेले से भी पड़ गए, ये भी एक कहीं ना कहीं एक आपसी भाईचारे का एक कारण बनया है खत्म होने का।
0: हाँ घना कारण ये तो सर, भाई बाहर निकल गए उसने फिर घरकार गांव का तो आना
1: रुख
0: जाना छोड़ ही
1: छोड़
0: दिया,
1: दे दिया।
0: और उन्हें फिर न्यू मालूम लागे मारा के है कुछ नहीं, हमारा तो बूढ़े है, वो बस अपने घर घर तक सीमित हो जाए, से
1: जी
0: गांव का वो भाईचारा था वो उनका खत्म हो जाए, फिर छोटे बालक

0: के माँ अगर शिकाओगे भाई हम इतने भाई थे इतने बैठा दा गांव में बैठा दी एक पंचायत फैसले कराया कर दी सारे गांव में, ये वो
1: तो
0: बात नहीं रही।
1: नहीं रही है। बड़का नरेंद्रेश भाई अपने बड़े बुजुर्गों कहेगी एक दो पीढ़ी के बाद नामे एक में ध्यान नहीं होता
2: सत्यवचन है जी, यह बात में बिल्कुल आप सताई है आपकी,
1: है ना।
2: या फिर कुछ बुढ़िया भी कसूर हो गया कुछ मनस जी, मैं कुछ देखूं मैं
1: हाँ
2: वो बूढ़ा है 1,000 रुपया बच्चा के करेगा जी, या हमने
1: देखो
2: कुछ
1: जी
2: दिया ही बात फर्क पड़
1: दारू
2: गया
1: तो
2: जी,
1: पातो जब बूढ़ा हो तो जवान हो
2: अब
1: है
2: पीनी
1: ना,
2: जी
1: वो तो गलत है ही है।
2: या तो पीनी जी है जो बुद्ध
1: हाँ
2: के पहले में नशा करें बैठे हो तो बच्चा तो आप देखा के कह दो
1: जी,
2: आपने आती तो यह भी सत्संग बिगड़िया है जी, ये
1: मतलब
2: होना
1: अपना
2: करना
1: जो
2: जी नशे पते तो जी।
1: आचरण जो है अपना वो ठीक हो
2: हाँ क्या बात है जी,
1: वो अच्छा
2: उसका
1: होगा,
2: उसका अच्छा होगा नहीं, ऑटोमेटिक दूसरा आदमी ने भी अच्छा लगा है जी।
1: अच्छा लगेगा इसमें बिल्कुल। चलिए समस्याएं तो बहुत है हो के मतलब क्रिया के जा कि कहीं ना कहीं जो टूटा जो भाईचारा है वो थोड़ा सा बना है, थोड़ा सा बने आ रहे हैं बलवान जी के भी आपस में थोड़ा बड़े बुजुर्गों का भी मान मर्यादा बनी रहे और नई ताती भी थोड़ी सी खुश रहे। क्या कहोगे आपके भी नए बच्चों को कि भी थोड़ा बहुत इतना
0: नए
1: ध्यान रहे।
0: बच्चों को अपने बच्चों को ये शिक्षा देने लायक है, भाई देखो पहले ऐसा भाईचारा था, आप भी 10 मिनट 20 मिनट घंटा 2 घंटे बच्चे धोरा बैठा के उन्हें
1: दोहरा बैठा
0: समझाओ
1: के
0: ना, तो जब उनका बड़ा ज्ञान पैदा हो भी पहले भी बूढ़ा की सेवा न्यू क्रिया कर दे, हम न्यू क्रिया कर दे इस तरह क्रिया दे भाई, तुमने भी आगे देखे इसी तरह करना से।
1: वैसे देखो इस मामले में अगर हम बात करें वो 3-4 साल का जो लॉकडाउन लग गया था कोरोना काल का,
0: हाँ
1: तो सारे घर में रहा करते,
2: सारे घर में रह
1: तो
2: गए
1: बड़का ने बेरा पाट गया कि दादा
0: जी।
1: दोरो बैठने की क्या कीमत है दादा दोरो बैठ के मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं फर्क आया
2: उनका
1: था
2: दादा दादी ने टाइम पास करा है जी, वो हो ही नहीं था,
1: वो नहीं
2: वो क्यों
1: था
2: कर गए सर दिन घर रही ना स्कूल में जैसे कि ना कड़ी और जावे सारन दादा क्यों कहानी कहता उनकी क्यों और बात समझा, उनके बड़ी ओनी हुई है माँ बाप बोल रहे कहने उनकी ज्ञान भी है बहुत से बच्चे ने
1: बिल्कुल।
2: इसे
1: क्या
2: हुए हैं जमानियों
1: क्या बलवान जी का तजुर्बा कह रहे हैं
2: बलवान जी का तजर्बा
0: महाराज दौरा सारे ठीक बैठे थे सारे, और
1: कित
0: टाइम पास कित करें
1: कर रहे हैं।
0: ये वही दादा दादी दौरा करें, और बाहर सबका बैन ला दिया भी कितने जाना नहीं बाहर घर से बाहर लकड़ना नहीं,
1: निकलना थी
0: तो और घर में ये भाई के तो टीवी देख लिया के भाई
1: दादा दादी दोर
0: दादा
1: बैठ
0: दादी
1: के
0: और
1: या बड़े
0: खेले
1: बुजुर्ग उन दोर बैठ के थोड़ा सा कि मैं बूझ लिया कि मैं और नहीं तो अपने परिवार के बारे में बूझो
0: हाँ
1: है, या बड़े बताओगे भाई तेरे दादे पड़दादे और ऊपर की पीढ़ी के हैं थोड़ा जब बताओगे तो बालक ने बेरा पाटा गा था।
2: फर्ज बूढ़ा का भी है बच्चे का भी है जी, पूछना भी चाहिए और
1: हाँ
2: बताना भी चाहिए बच्चे को
1: बिल्कुल
2: अगर भाई
1: बताना चाहिए
2: यो काम न्यूर न्यू होगा न्यूर न्यू करो न्यू, इसमें बड़ा भाईचारा बड़ा है जी, घटा नहीं का जी
1: बिल्कुल। नहीं घटता तो
2: बुजुर्ग
1: नहीं
2: का भी।
1: है, घटने के लिए और कारण बहुत है, लेकिन ये कुछ छोटी छोटी बात ऐसी है जिनका अगर ध्यान करें तो भाईचारा है जो है आपस में वो घर में परिवार में और कदे कदे बड़ा कर गांव में भी जाए है अंकल जी बलवान जी, तो वहाँ भी जा करके न्यू मान के चलो कि बच्चों को अच्छा लगता है कि ये हमारा घर या हमारी गली थी, ये हमारे खेत हैं है, ये पेड़ मरदादन लगाया था पड़दादन लाया था, कितनी बात आती है श्यामी जो।
0: बहुत गुनिया जी,
1: हाँ
0: जरूरत जा
1: जी
0: पुराना घर देखा है अपना भाई वो रह रहा करते
1: और
0: हम
1: अरे आ करते यहाँ सब निकले, यहाँ
0: या
1: जड़ जो है वो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अपनी कि हमारी जड़ कहाँ है। चलो बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने घर में परिवार में स्वस्थ रहें तंदुरुस्त रहें खुश रहें, और आज इस बातचीत में आए बलवान जी आपका और नरेश भाई आप दोनों का
2: आपका भी
1: बहुत बहुत
2: बहुत बहुत
1: धन्यवाद,
2: धन्यवाद जी,
1: बहुत
2: बहुत
1: जय
2: बहुत
1: श्री,
2: धन्यवाद।
1: नमस्कार।
3: तो ये आपने सुनी पूर्व प्रसारित बातचीत, ये बयान सुनवा दें भाई रागनी दो गाना जिसके गायक कलाकार हैं कुसुम तंवर और गुलाब सिंह।

तो भैया आपने सुना दो गाना, गायक कलाकार थे कुसुम तंवर और गुलाब सिंह, और वैसे रागने के साथ आज का ग्रामीण संसार कार्यक्रम समाप्त करने की अनिल भाई दो इजाजत, सारे बण भैया ने राम राम।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ जिसे लिया है फिल्म जोरदार से। आवाज़ें हैं अनु मलिक, अबू मलिक और कृष मलिक की। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जिद्दी से। आवाजें हरिहरन और चित्रा की, गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं दिलीप सेन।

कुमार सानू के स्वर में आइए सुनते हैं यलगार फिल्म से ये गीत। सुदर्शन फकीर ने गीत को लिखा है, संगीत दिया है चन्नी सिंह ने।

लता मंगेशकर के स्वर में अब आपको सुनवा रहे हैं वो कौन थी फिल्म से ये गीत। राजा मेहंदी अली खान ने बोल लिखे हैं, धुन तैयार की है मदन मोहन ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं विजयपथ फिल्म से ये गीत। आवाज साधना सरगम की है, गीतकार हैं फैज अनवर, संगीतकार हैं अनु मलिक।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अब आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म उमंग से। गीतकार हैं नीरज और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अलका याग्निक के स्वर में आइए सुनते हैं तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

सोनू निगम के स्वर में आइए सुनते हैं तुम बिन फिल्म का ये गीत। फैज़ अनवर ने बोल लिखे हैं, निखिल विनय ने इस गीत के लिए धुन तैयार की है।

श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, और इस गीत को लिया है फिल्म त्रिदेव से। आवाज़ें हैं मनहर उदास और अलका याग्निक की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है और श्रोताओ अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज हमारे कलाकार रहेंगे मणिकलाल वर्मा, आप सुनेंगे इनकी गाई हुई गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे कलाकार थे मानिक लाल वर्मा। आपने सुनी इनकी गाई हुई गजलें। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
3: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म

0: पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के 7वें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के

0: के साथ भारत के रिश्तों में काफ़ी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदिनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mutha.

किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रोटी के कुछ गीत। तो आइए सुनते हैं पहला गीत, आवाज़ है किशोर कुमार की।

0: अभी आपने सुना किशोर कुमार लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत, और इसी गीत के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुने फिल्म रोटी के कुछ गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम थारी पसंद।
1: थारी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अजीत सिंह और उनके साथियों की गायी उड़ रागनीते, और पसंद भेजनी है आप सब। आप हैं इस राणा जिला पानीपत ने सतबीर सिंह, दीपक, संदीप, सोनू, अंगूरी और चांदकौर। या एक चिट्ठी और आई है इस राणा ते, और पसंद भेजने भाई हैं चरण सिंह जागलान, रमेश, लोकेश और धीरेन जागलान। ये हमारे श्रोता हैं पांडू पिंडारा जिला जींदते, बादल सिंह गिल, कमलेश राणी, टीनू, प्रीति, डॉक्टर वाणिका और डॉक्टर अंकित गिल। फ्रेंड्स कलोनी कैथल ते हमारे श्रोता हैं रामफल मान, रामधारी मान, पालाराम, इंद्र सिंह, अनिल, प्रवीण और दलजीत मान। गांव बिरौली जिला जींदते हमारे श्रोता हैं सुरेंद्र सांगवान, सचिन और अंकित सांगवान। यह चिट्ठी आई है चौधरी वास्ते, और पसंद भेजने वाले भाई हैं राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, प्रयाग, प्रियांशी, विवेक और प्रीति। ईश्वरागनी ने पसंद करे हैं गांव बाणा ब्राह्मणांत हैं मेघराज शर्मा, गौरव, सौरव, विजय, अजय, जितेंद्र और जोगिंदर शर्मा। तो भाई सुना सब इनकी पसंद पर अजीत सिंह और उनके साथियों की गाई उड़ या रागनी।

भैया ने या तो रागनी सुनी जिसके गायक कलाकार थे अजीत सिंह और उनके साथी। कार्यक्रम की अगली रागनी सुनांगे रामफल शर्मा और उनके साथियों की गाई उड़ और पसंद भेजी है आप सबने। गांव हरिगढ़ तहसील सफेदों जिला जीनते ये हमारे श्रोता हैं दनपत लांबा, कृष्ण, रणबीर, धर्मबीर, कुलदीप, विजेंद्र, बबलू और उनका पूरा परिवार। गांव मुड़लाणा ते चिट्ठी आई है और पसंद

भेजने भाई हैं रामफल लठवाल, दिनेश, नरेश, सतपाल, सुरेश, रणधीर, जसमेर, अजमेर, ईशांत, यश, लक्की और मयंक। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरव और उनके परिवार के सदस्य। गांव बलियाली जिला भिवानी से हमारे श्रोता हैं दर्शन लाल बंसल, सुदेश राणी, प्रवीण कुमार, ममता राणी, कमल कुमार, गर्विश और तमन्ना बंसल। फरासी से हमारे श्रोता हैं राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह और प्रमोद कुमार डूडी। आसी शहर ते राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। तो सब सुने भाई अपनी पसंद पर रामफल शर्मा और उनके साथियों की गायोड़ या रागनी।

भजन रागनी सुनी, जिसके गायक कलाकार थे रामफल शर्मा और उनके साथी। कार्यक्रम की अगली रागनी सुनेंगे बाबूराम दैया और उनके साथियों की गाई और पसंद भेजी है आप सबने। छत्तीसगढ़ बेमेतराते हैं सुरेंद्र कुमार, सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, बाई कमलकांत, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी। यह चिट्ठी आई है दिल्ली से अरमोरी गेट से और पसंद भेजनी है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। ये हमारे श्रोता हैं मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास, प्रियंका, रमन, रितु, बविंस, मिशेल और किन सुख खन्ना। गांव दयोरा कैथल से यह चिट्ठी आई है और पसंद भेजने वाई हैं ईश्वर चंद शर्मा, मास्टर विनय भावना, निर्मल कुमारी, कुलदीप शशांक, रक्षित तनु, अन्या, प्राची और विनोद शर्मा। तो सब सुनो भाई अपनी पसंद पर बाबूराम दैया और उनके साथियों के गाई उड़ या रागनी।

भैया ने या तो रागनी सुनी, जिसके गायक कलाकार थे बाबूराम दैया और उनके साथी। कार्यक्रम की अगली रागनी सुनांगे बलबीर शास्त्री और उनके साथियों की गाई ओड़ और पसंद भेजी है आप सबने। आप हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। गिड़काली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं कृष्ण पाल डबास, अनुज राजेंद्र, अजय नीटू और विनोद डबास। इंडोन शहर जिला करौली राजस्थान से खुशीराम मोनू, विष्णु, दीपक राहुल और रिंकू। और महेंद्रगढ़ से चिट्ठी आई है, पसंद भेजने वाई है ममता गांधी, विकास, वंश, दिया, नोनू, सगुन और विकी गांधी। तो भाई सब सुने अपनी पसंद पर बलबीर सिंह और उनके साथियों की गाई ओड़ या रागनी। भाइय ने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे बलबीर सिंह और उनके साथी। कार्यक्रम की अगली रागनी सुनांगे बलवंत वत्स और उनके साथियों की गाई ओड़ और पसंद भेजी है आप सबने। आप हैं गादी जनपद बागपत उत्तर प्रदेश से काशीराम दलाल, बलदेव सिंह आर्य, रामपाल, दयानंद, धर्मवीर, नितिन, अर्पित, हरिओम, ओमपाल, सन्नी, निमेश, अनुज और रिडकुमल। छापरौली उत्तर प्रदेश से जसवंत सिंह खोखर, रामकुमार, अनिल, सुनील, प्रवीण, सुमित, विनीत और पूरा खोखर परिवार। सिसाई हिसार से अनूप, दिनेश, बलवान, बाली, चमन, रणधीर, सुरेंद्र और दीपांशु। गांव देवरेड़ते हमारे श्रोता हैं श्रीराम चहल, वीर सिंह चहल, मास्टर ओम, बलवान, धर्मचंद, दया किशन, कालाराम और मास्टर रणधीर। लाठते हमारे श्रोता हैं केशव, नमन, अनवी, अवि, कपूर सिंह कौशिक, राजवीर फौजी, नाना फौजी, रामफल और खेतुराम। तो भाई सुने सब अपनी पसंद पर बलवंत वत्स और उनके साथियों की गाई ओड़ या रागनी।

भैया ने रागनी सुनी जिसके गायक कलाकार थे बलवंत वत्स और उनके साथी। कार्यक्रम की अगली रागनी सुनांगे जगबीर सिंह बलंबिया और उनके साथियों की गाई ओड़। और पसंद भेजनी है आप सब, आप हैं लोको कॉलोनी लोहारू ते बिल्लू सिंह चंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा, योगेंद्र कुमार और नरेंद्र कुमार। ये चिट्ठी आई है खेड़ी दौलतपुर ते और पसंद भेजनी है प्रीत सिंह, बिंटू और संजय कुमार। चिड़िया दुधवा जो चरखी दादरी में है हमारे श्रोता हैं, सोनू मंजी, तनीष संगोलिया और उनका पूरा परिवार। खेड़ी चोपटा ते पंडित सत्तारेड़ी, राजा राम पुनिया, रामेर शर्मा और किताब सिंह सोरण। जिंजर ते मास्य सतबीर शर्मा, कौशल्या बाला और उनका पूरा परिवार। बड़मूजी सागर मध्य प्रदेश ते रघुनाथ, सुषमा, बबीता, ममता, विनोद, विशाल और ओम प्रकाश। तो सब सुने भाई अपनी पसंद पे जगबीर सिंह बलंबिया और उनके साथियों की गाई ओड़ या रागनी।

भजन रागनी सुनी, गायक कलाकार थे जगबीर सिंह बलंबिया और उनके साथी। और कार्यक्रम की अगली रागनी सुनांगे सत्य फरमाणिया और उनके साथियों की गाई ओड़ और पसंद भेजी है आप सब ने। लुधेसर ते पप्पू राम गाट, संतोष देवी, लक्ष्मी देवी, प्रियंका साक्षी और रुचिका देवी। अलेवा जलाजीन ते नरेश लुहान, जोगिंदर लुहान और राजकुमार लुहान। जाटू लुवारी ते मारे श्रोता हैं राम फूल हरी राम, मदन साधु राम और आवाज सिंह। गांव उगरा खेड़ी जिला पानीपत ते अनिल मलिक, सुनीता, पंकज, परी प्रीति और तक्ष मलिक। गांव सामड़ी ते डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, शकुंतला, इंद्र प्रकाश, श्रीकांत और संदीप। तो कार्यक्रम का आखिर में सुनांगे आप सब की पसंद पे सत्य फरमाणिया और उनके साथियों की गाई उड़ या रागनी।

0: भाईजान रागनी सुनी, जिसके गायक कलाकार थे सत्य फरमानिया और उनके साथी। कार्यक्रम आपने किसा लगा या बताएं, और आप भी अपनी पसंद की रागनी कोई सुनना चाहे हैं तो चिट्ठी डाल सके हैं। कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम थारी पसंद, द्वारा केंद्र निर्देशक, आकाशवाणी रोहतक, पिन कोड 124001। और ईब घड़ी का इशारा, मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में। ईब दलजीत भाई ने इजाजत दे दो, सारे बन भाइयों ने राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम थारी पसंद, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को मंजू शर्मा का स्नेह भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे लिया है फिल्म आप आए बाहर आई से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी ने बोल लिखे और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं के द्वारा। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेगी से हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। भटिंडा रोड डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से पत्र भेजा है हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जेतेक बीरक और मीका बीरक ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत। आवाज़ लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी। गीतकार हैं नीरज, संगीतकार एसटी बर्मन। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की है। दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। बेरडी से हैं हुकुम कर्मरकर, सुनीता कर्मरकर, हार्दिक कर्मरकर, प्राची कर्मरकर और तनु कर्मरकर। आप हैं मिश्रपाना केलंगा से मास्टर सुंदरपाल कौशिक, अभी निशु देबू परी पीहू पाखी कौशिक। डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से पत्र भेजा है महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह ने।

अगले गीत के लिए फरमाइश आप सभी श्रोताओं की है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आप हैं राजा बाजार बिहिया से सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी, थाना रोड बक्सर से हैं ओमानंद केशरी, धनानंद केशरी और विनोद केशरी। चंडीगढ़ से पत्र भेजा है सतीश अनेजा बिमला अनेजा ने। सुंदरखेड़े राजमाता नगर बुलडाना महाराष्ट्र से पत्र आया है नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार का। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म श्री 420 से ये गीत। आवाज़ लता मंगेशकर की, शैलेंद्र ने गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनपढ़ से, जिसे लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत दिया है मदन मोहन ने और स्वर है लता मंगेशकर का। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं के द्वारा पंजाब मलोट पंजाब से हैं राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन इंदौरा, रितु इंदौरा, भविंश खन्ना, मिसेल खन्ना, किंशुक खन्ना और दिया इंदौरा। आप है जतुका किशनपुर से, आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, चांदनी नाज, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और नाज परवीन। ये पत्र आया है हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा और हीना कौशर। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन चाहे गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स

0: अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।